Mm-hmm.

just

ओम शबद गोविंद संगीतरम गोविंद गोविंद ओम ओम वारमुगे बड़ाड़ू पेग मणिबड़म सुरकुमान कोर्मुरे अड़ से कुड़े बड़ाड़ू बाढ़ गए नान में अड़े रंग नटम ओम शबद गोविंद संगीतरम गोविंद।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
0: प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: आज सुबह के 6 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे करुणा जी नमस्कार।
2: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। MMM बीते कल, आज और आने वाला कल, कर्तव्य और जिम्मेदारी, यह विषय चुना गया है MMM के 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर, जो कि इस रविवार 27 सितंबर को गैजू में मनाया जाएगा। जनवरी 2027 से निजी माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में एक और बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि दो शैक्षणिक संस्थानों को दी जाने वाली सरकारी वित्तीय सहायता

0: सहायता समाप्त हो जाएगी। महोवाक्वा का जलस्तर नवंबर के अंत तक 20% तक गिर सकता है, यह अनुमान वाटर रिसोर्सेज कमीशन का है। देश का मुख्य जलाशय फिलहाल 38.5% तक भरा हुआ है। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। लोगों द्वारा अपने पितरों को याद करते हुए उनकी तृप्ति के लिए खास तर्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जाएंगी। और विदेश में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 81वां सत्र चल रहा है। ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस का अंतिम महासभा सत्र है। गुतेरेस का कार्यकाल रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक संकटों, संघर्षों, महामारियों, जलवायु आपदाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक अहम दौर पर भरा रहा। और अब मौसम की रिपोर्ट। पूर्व की ओर से आने वाले बादल रह रहकर हमारे मौसम को प्रभावित करेंगे। अनुमान है कि सुबह के वक्त पूर्व, दक्षिण एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घिराएंगे और जहां तहां बारिश हो सकती है। दोपहर में मौसम सुहाना रहेगा सिवाय की ऊंचाइयों पर जहां हल्की बारिश हो सकती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2.50 मीटर तक हो सकती हैं। दूर समंदर में न जाने की सलाह दी जाती है। आज के लिए सूर्योदय 5:54 पर, सूर्यास्त होगा 6:07 पर। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30 तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।
1: You're listening to RM3 Radio, Man.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. सामीन, अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की. कुरान मजीद की तिलावत एक अजीम इबादत है जिससे बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है. कुरान पढ़ने और सुनने से दिल को रूहानी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है. कुरान का हर हर्फ पढ़ने पर नेकी मिलती है और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से अजर अता फरमाता है. सामीन कराम, पेश खिदमत है एक हम्द, आइए समाअत करते हैं.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे मैं उसके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। मेरा बंदा जिन आमाल के ज़रिए मेरे करीब होता है उनमें मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वो आमाल हैं जो मैंने उस पर फ़र्ज़ किए हैं, और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मुसलसल मेरे करीब होता रहता है यहाँ तक कि मैं उससे मुहब्बत करने लगता हूँ। इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के नेक बंदों की तहकीर, तौहीन और बिला वजह दुश्मनी इंतहाई ख़तरनाक मामला है। वली अल्लाह वो शख्स है जो ईमान, तक्वा, फ़राइज़ और नेकी की ज़िंदगी इख्तियार करता है। इसलिए हमें उलमा, सालेहीन और अल्लाह के नेक बंदों के साथ अदब से पेश आना चाहिए, ताहम किसी शख्स को वली समझने में भी शरीयत के उसूलों को सामने रखना चाहिए। असल मयार तक्वा और इताअत इलाही है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन और तरीके पर होता है, लिहाजा तुम में से हर शख्स को देखना चाहिए कि वो किसको अपना दोस्त बनाता है। औलिया अल्लाह और सालेहीन की सोहबत इंसान के दिल और किरदार पर अच्छा असर डाल सकती है। उनकी मजलिस में बैठने से हमें नमाज, जिक्र, तिलावत, सब्र, आजजी और हुस्न अखलाक की तरगीब मिलती है। उनके अदब का एक तरीका ये भी है कि उनकी अच्छी नसीहतों को सुने और अपनी ज़िंदगी में नेकी पैदा करने की कोशिश करें। सिर्फ ज़ाहिरी अकीदत काफ़ी नहीं बल्कि उनकी नेक तालीमात पर अमल करना असल फ़ायदा है।

मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला के नेक बंदों का अदब हमारे ईमान और अखलाक का हिस्सा है। उनकी इज्जत करें और उनकी अच्छी बातों से फ़ायदा उठाएं। उनकी ज़िंदगी से तक्वा, सब्र और इबादत का सबक हासिल करें। उनके मज़ारात पर जाएं तो अदब और ख़ामोशी इख्तियार करें। साहिब कब्र के लिए मग़फ़िरत और रहमत की दुआ करें। अपनी हाजात और दुआएं अल्लाह ताला के सामने पेश करें, क्योंकि हकीकी कुदरत और इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास है। अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत हमें अल्लाह की इताअत की तरफ ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन कराम, सबा खैर प्रोग्राम अनकरीब ख़त्म होने वाला है। आइए प्रोग्राम के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नज़रा पेश करते हैं। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।

श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारु भक्तुल पालित कोंगु बंगारंगा भाविंचबड़े कलियुग दैवं तिरुमल क्षेत्रानी दर्शिंचुकोवडं भक्तुलकु एंतो पवित्रमैन अनुभूति। स्वामीवारी सन्निधि लो गोविंदा गोविंदा अनी नामस्मरण चेस्ते मनस्सुकु प्रशांतत आध्यात्मिक आनंदं कलुगुतायनी भक्तुलु विश्वासिस्तारू।

94.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3। भक्ति में शक्ति, भक्ति में शक्ति। रेडियो मनोरंजन के साथ जुड़े हुए समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है तो पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसका महत्व और विशेषताओं के बारे में। आइए सबसे पहले श्री गणेश करते हैं।

पितृपक्ष हिंदू धर्म की एक अति पवित्र और भावपूर्ण परंपरा है। ये वो समय है जब हम अपने पूर्वजों, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और उन सभी पितरों को श्रद्धा से याद करते हैं जिनके कारण आज हम इस संसार में हैं। हमारी परंपरा हमें सिखाती है कि हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें, उनके योगदान को याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसी पवित्र भावना का एक महत्वपूर्ण अंग है तर्पण।

अर्पण शब्द संस्कृत के तृप धातु से जुड़ा है। इसका अर्थ है संतुष्ट करना, तृप्त करना या श्रद्धा के साथ अर्पण करना। तर्पण के माध्यम से जल और अन्य सामग्री को मंत्र और श्रद्धा के साथ पितरों को समर्पित किया जाता है। इस कार्य के पीछे सबसे महत्वपूर्ण भाव है श्रद्धा, स्मरण, कृतज्ञता और प्रेम।

पितृ पक्ष में जब हम अपने पूर्वजों को तर्पण देते हैं तो हम केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं कर रहे होते हैं बल्कि अपनी परंपरा और अपनी वंश परंपरा से एक आध्यात्मिक संबंध को महसूस करते हैं। तर्पण में जल का विशेष महत्व माना गया है। जल जीवन का प्रतीक है। जल को अपने हाथों से अर्पित करते हुए हम अपने पितरों को याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, कई परंपराओं में तिल, कुश और जल का प्रयोग किया जाता है। ये सब अपनी अपनी धार्मिक और पारंपरिक महत्ता रखते हैं।

भाव तर्पण करते समय सबसे जरूरी है मन की पवित्रता और भाव की सच्चाई। सिर्फ विधि करना ही उद्देश्य नहीं है। अगर दिल में अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता है, तो वही भाव इस पूरी परंपरा को अर्थपूर्ण बना देता है। पितृपक्ष हमें एक गहरी बात याद दिलाता है। हम अपने अस्तित्व में कभी अकेले नहीं होते। हमारे पीछे कई पीढ़ियों की कहानी, संस्कार, त्याग, मेहनत और आशीर्वाद जुड़े होते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो कुछ दिया, उसकी कीमत शब्दों में पूरी तरह समझा नहीं जा सकती। तर्पण इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक पवित्र माध्यम।

के दौरान कई लोग अपने पितरों के नाम से दान भोजन गौ सेवा ब्राह्मण भोजन या जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। इन सब का मूल भाव है सेवा और पुण्य को अपने पूर्वजों की स्मृति में समर्पित करना। परंपरा के अनुसार की गई श्रद्धा और दान को पितरों के प्रति सम्मान का रूप माना जाता है। तर्पण की एक और सुंदर विशेषता है कि ये हमें विनम्रता सिखाता है। आज जो हम हैं उसमें हमारे पूर्वजों का भी योगदान है, इसलिए पितृपक्ष हमें अपनी जड़ों को याद करने, अपने परिवार की परंपराओं को समझने और अगली पीढ़ी तक संस्कार पहुंचाने का अवसर देता है। पितृपक्ष का संदेश सिर्फ शोक का नहीं बल्कि स्मरण और कृतज्ञता का है। श्रोताओं, ये हमें सिखाता है कि जो लोग शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, उनकी यादें, उनके संस्कार और उनकी सीख हमारे जीवन में सदा जीवित रह सकती है। जब हम तर्पण करते हैं तो अपने मन से जीवित रह सकती है। तो सच्चे मन श्रद्धा से अपने पूर्वजों उनका तर्पण करें और उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रणाम, शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी से। करुणा जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, सभी को नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल रात लंदन के लिए रवाना हुए। ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान वेशागोस द्वीप समूह के मुद्दे पर उच्च स्तर पर चर्चा जारी रखेंगे। खासकर मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच हुए समझौते के क्रियान्वयन से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर। इस दौरान उनकी मुलाकात बरतानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोनाथन पावल से भी होगी, जो शागोस मामले में एक प्रमुख वार्ताकार हैं। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने शागोस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के साथ बातचीत के लिए विशेष दूत भी नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्याना वोमागी प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगी। एमएमएम ने अपने 57वें स्थापना दिवस के अवसर पर रगेजवी में अपने समर्थकों को जुटाया। एमएमएम के अध्यक्ष रेजा उद्दीम ने पार्टी के इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एमएमएम का अस्तित्व ही सांप्रदायिकता को खत्म करने के उद्देश्य से है। उन्होंने ये भी कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र जीवंत है। रेजा उद्दीम के अनुसार केवल सरकार में रहकर ही चुनावी प्रोग्राम लागू किया जा सकता है। आज से पितृपक्ष शुरू हुआ है जो 10 अक्टूबर तक चलेगा। इसके दौरान खास रूप से पितरों को याद किया जाता है, उनकी तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल सैमालो बेजितोंबो में एक जानलेवा सड़क दुर्घटना हुई। शाम 5:35 के करीब रॉयल रोड पर सैमालो फुटबॉल मैदान के पास एक मोटरसाइकिल कंक्रीट की दीवार से टकरा गई। मोटरसाइकिल चला रहे 27 वर्षीय युवक की मौत स्थल पर ही हो गई। विदेशी स्तर पर ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी वार्ताकारों के आधिकारिक जवाब का इंतजार करेगा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 7 दिनों के भीतर वाणिज्यिक जहाज़ों के लिए होमोज जलमार्ग को फिर से खोलने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ट्रंप की अस्वीकृति का उल्लेख किया उन्होंने और अमेरिकी राष्ट्रपति पर पहले ही विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। सैंपल रोड फिनिक्स में विनर्स के सामने 67 साल के 67-year-old श्री अशोक डोमन जो अशोक से जाने जाते थे और पहले फिशरीज के अवसर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 की पत्नी श्रीमती विदुषी डोमन के मकान सैंपल रोड फिनिक्स से उठाकर दाह संस्कार के लिए आलिब्रियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: जी हाँ, 12:10 हो चुके हैं और आज है संडे का दिन, 27 सितंबर 2026, यानी कि 27 सितंबर रविवार का दिन है 2026। हेलो जी, नमस्कार, सादर प्रणाम, साथ में आपको कहेंगे गुड आफ्टरनून और आदाब। क्या होगा हमको पता है, गीत संगीत बातें शातें होंगी, साथ में आपके डेडिकेशंस 4028070 पर और आपके मैसेजेस आएंगे ऑन 5250-6200 और ये है आपका अपना प्रोग्राम सुहाना सफर और मैं हूँ देविना, आपका साथ देने के लिए 3 घंटों का शो है और ऐसे में हमेशा हम आ जाते हैं कुछ ना कुछ अलग लेकर संडे आफ्टरनून को, क्योंकि आज दिल जो है कुछ करने को मन नहीं करता है, लेजी लेजी सा फील होता है, तो इसलिए इस संडे लेजी आफ्टरनून शो में हम आपको ले चलेंगे बॉलीवुड के उस जहां में, जहां पर गाने वाकई मन को मोह लेता है और साथ में अगर किसी कलाकार को लेते हैं तो उस पर गाने चलाते हैं तो अच्छा लगता है, कुछ उनकी जो ज़िंदगी में हम वापस जाते हैं, उस ओर चले जाते हैं 70s 80s। और साथ में 2 बजे के बाद ऑब्वियसली हम पेश करने वाले हैं 90s वाले गाने। दोस्तों, आप सुन रहे हैं MBC और MFree रेडियो मनोरंजन का बेहद प्यारा, बेहद रंगीन और दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम आपका ही सुहाना सफर, यानी कि रविवार है, थोड़ा आराम, थोड़ी मस्ती, थोड़ी यादें और ढेर सारे खूबसूरत नगमे, तो क्यों ना इस दोपहर को बना दे और भी सुरमई, रोमांटिक और यादगार, क्योंकि अगले जो 2 घंटे हैं ना, हम चलेंगे बॉलीवुड की उन गलियों में जहां हर गीत एक कहानी है, हर धुन एक एहसास है और हर बोल दिल से निकल कर सीधे दिल तक पहुँचते हैं। कोई कभी कभी ऐसा है, कोई गीत हमें पुराने दिनों में ले जाता है, कभी किसी चेहरे की याद दिलाता है और कभी बस यूं ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाता है। बस आप गेस कीजिए कि आज कौन सा वो कलाकार है जिस पर हम गाने चलाने वाले हैं। अगला गाना सुनकर आप गेस लगाओ, बस इस गाने को आप एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल आपसे हमने प्यार किया है, आपके हम आपके दिल में रहते हैं, आप हमारे दिल में रहते हैं, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, फ्रॉम द मूवी कामचोर। और ऑफ कोर्स यहाँ पर मैसेजेस आए हैं, अफसोस हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं है, नहीं तो आपको दे देते। सो बस यहाँ पर है कौन, उन्होंने कहा है गैस, हमने कहा था ना गैस कीजिए कौन सा कलाकार है, तो अंजनी जी आपने बिल्कुल फरमाया, सही फरमाया। और साथ में एक और है, हम देखते कहाँ, किरण पुरी जी, जे जी लाल, नरेंद्र कुमार निंदी, और साथ में है काला राम कारीगर, वैंकूवर कनाडा में है। गुड आफ्टरनून टू यू टू, और अच्छा लगा कि आप लोग हमसे कनेक्टेड हैं। तो आपने भी कहा राकेश रोशन, बिल्कुल सही फरमाया आपने। जी अब ने सोचा कि आज हम खास बना देते हैं इस संडे आफ्टरनून को, और आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने कैमरे के सामने अपनी पहचान बनाई और फिर कैमरे के पीछे रहकर हिंदी सिनेमा को ऐसी कहानियां दी जिन्हें दर्शकों ने दिल से अपनाया, दिल से प्यार किया। जी हाँ दोस्तों,

आज का सुहाना सफर है राकेश रोशन स्पेशल। वैसे राकेश रोशन ने अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में की। पहले जब उन्होंने एक्टिंग की तो मेन रोल में आए, मगर धीरे धीरे साल ब साल जैसे उनको ना सेकेंडरी रोल में ही हमने देखा। उनके अभिनय के दौर की फिल्मों और किरदारों ने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक पहचान दी ऑफ कोर्स, लेकिन उनकी मंजिल शायद सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं थी। उन्होंने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा, डायरेक्टर, और फिर एक ऐसी सिनेमा टिक जर्नी शुरू हुई जिसने उन्हें बॉलीवुड के सफल फिल्मकारों में से एक नंबर वन माना गया, एक अलग पहचान दी। और क्या खूबसूरत गीत उन पर पिक्चराइज हुए, कितने अच्छे अच्छी फिल्में उन्होंने दी। बस उन्हीं का सफ़र है आज सुहाना सफ़र प्रोग्राम में, और ये गाना आप सबों के लिए, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है नंदा जी पाए से हैं, और नंदा मौसी जी ये गाना मांग रही हैं फॉर पुनीता फैमिली, गणेश फैमिली, उनके सभी बच्चों के लिए, साथ में उनके जो परिवार हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए। समा है सुहाना आप सबों के साथ, और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर देवीना है आपके संग सुहाना सफ़र प्रोग्राम के दौरान।

जाइए गाना कनाडा के जो है हमारा दोस्त किरण पुरी, जिजे लाल, नरेंद्र कुमार नंदी और साथ में काला राम कारीगर आपके लिए।

Center 94 North South 95.6 East West 98.2 You are listening to RM3 Radio.

RM3 Radio. Radio. Radio. RM3.

0: क्या राजा बने या नहीं पता नहीं, मगर उनको बहुत करोड़ों ज़्यादा रुपये मिले उनको, राकेश रोशन जी को। और वैसे उनको अराउंड द वर्ल्ड वे फेमस हुए भी एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर। साथ में जब उनके बेटे का नाम आए तो लोग कहेंगे ना कि ये तो है राकेश रोशन के सुपुत्र ऋतिक रोशन। वैसे दोस्तों, राकेश रोशन की फिल्मोग्राफी में रोमांस भी है, डांस भी है, ड्रामा भी है, इमोशन है और साथ में एंटरटेनमेंट भी। तो उनके चर्चे होते रहेंगे इस प्रोग्राम के दौरान अभी से लेकर 2 बजे तक। उन पर पिक्चराइज कुछ गाने हम चलाने वाले हैं। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे रोशन भाई, रोशन अरनाम जी। हेलो जी। और वे अपनी प्यारी सी वाइफ मनीषा के साथ हैं, ऑल्सो सन्स जयशर एंड रिशल। रोशन भाई, हमें सुनने के लिए, हमसे कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू सो मच दिल से। और वी आई होप कि आपका जो संडे है अच्छी तरह से गुजर रहा है फैमिली के साथ। और वे उन्होंने काफ़ी लिस्ट भेजी हैं कुछ गानों के जो पिक्चराइज हुए थे राकेश रोशन साहब पर, मगर आपका जो फेवरेट है हम चलाने वाले हैं अभी। जख्मी मूवी का गाना है, बप्पी लहरी साहब साथ में साथी कलाकार हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, जस्ट फॉर यू रोशन भाई, मनीषा भाभी एंड बच्चे लोग।
1: नथिंग इज इम्पॉसिबल।

RM3 Radio.

जब नाचो मेरी जान कम ऑन आज है संडे आफ्टरनून और संडे आफ्टरनून में कुछ लेजी लेजी सा फील हो रहा है तो हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर गाने कमाल के हैं, आप नाचेंगे भी गाएंगे भी और वैसे हम आपको ले चलते हैं पुराने ज़माने में। एक पुराने का मतलब है 70s 80s वाले जो गाने हैं टेरिफिक गाने होते थे उस समय और किसी न किसी कलाकार पर पिक्चराइज कुछ गाने हम निकल आते हैं जस्ट फॉर फन और इन बिटवीन हम आपकी कुछ फरमाइशें भी पूरी करते हैं नो वरीज। और यहाँ पर आपका साथ दे रही है देवीना हमेशा की तरह एवरी संडे। तो बस यहाँ पर एक फरमाइश आई है किसी कोई सेलिब्रेशन वाला और ये जो है हेलो जी आपको भी लवली संडे है। माधुरी जी हैं शायद मैं देखती हूँ कौन है। हाँ जी सो बस कोई बेस्ट विश है। हाँ हाँ माधुरी जी एग्जैक्टली तो वे कह रही है टुडे इज़ माय निफ्यूज बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू अक्षय ऑफ फ्लाक। अक्षय ढेर सारी शुभकामनाएं बेस्ट विशेज टू यू सेंडिंग विशेज फ्रॉम मामा वीना पापा राजन ऑल आंटीज और सभी रिलेटिव्स जो हैं। सो बर्थडे सॉन्ग हम बजाएंगे कुछ समय बाद। अभी के लिए एक और गाना है सेलिब्रेशन वाला पिक्चराइज्ड ऑन राकेश रोशन साहब फिल्म है आपके दीवाने। अभी आप हमने सुना किशोर दास साथ में रफ़ी साहब और कोरस और अगला गाना जो है इसमें भी उन्हीं की आवाज़ें होंगी। सो बेस्ट विशेज वंस अगेन टू अक्षय और सभी लोग जो अपना बर्थडे मना रहे हैं आज आपको दिल से हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे एंड एन्जॉय योर डे विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स एंड विद आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जहाँ तुमको खुश देखकर हम बहुत खुश हुए, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनों को मिस कर रहे हैं, किसी अपने को जो दुनिया में नहीं रहे, जो उनको छोड़कर चले। बस ऐसे ही एक गाना हम शामिल करते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, और ये गाना जो है जाएगा शुमन घईये की, जो प्यारी सी विमला जी हैं अपने पति चांद के की याद में। ये गाना उनके लिए, फिल्म है खोज और आवाज़ नितिन मुकेश साहब की, और ये गाना स्पेशली भावना के लिए। अभी अक्षय, करिश्मा, करुणा, दीदी श्यामा, सभी जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, सभी लोग चांद जी को याद करते हैं। बस ये गाना आपके लिए विमला जी।

जब अभी इतने दिनों की याद दिलाए, स्पेशली जब संडे आफ्टरनून होता है ना, जैसे मन कुछ कभी कभी उदास हो जाता है. डू यू फील लाइक इट? कभी कभी जब घर पर होते हैं हमें वो बीते दिन याद आ जाते हैं, नुस्तैलजिया हो जाता है. वो संडे, संडे का दिन ही ऐसा होता है. और कुछ लोग जो बिजी होते हैं वे निकल जाते हैं, कभी कभी वो बाज़ार चले जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग शॉपिंग सेंटर चले जाते हैं, कभी कुछ लोग सीसाइड चले जाते हैं या फिर किसी से मिलते हैं. और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संडे आफ्टरनून जब आता है कहते हैं ओ आई वांट टू बी अलोन, क्योंकि ऐसे में अपने आप को मी टाइम देने का वक्त आ जाता है संडे. सो अगर आप लोग अपना मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं तो हमारा साथ है, आपके साथ है. तो बस और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच मेरे दोस्त. वैसे राकेश रोशन को लेकर बहुत से लोग बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनको पसंद करते थे. उनकी आंखें हई, उनका अंदाज क्या था वो आप जानते हैं. और उनका जो बेटा है ना सुपुत्र ऋतिक रोशन साहब, हैंडसम है, इतने खूबसूरत हैं, इतने टैलेंटेड हैं कि क्या कहें. और जीन्स तो है पापा का, राकेश रोशन जो पापा ठहरे. और वैसे कभी पर्दे पर किरदार बनकर दिल जीता उन्होंने, कभी निर्देशक बनकर सपनों को कहानी दी. सिनेमा के इस सुनहरे सफर में राकेश रोशन ने अपनी एक अलग पहचान बनाई. और दोस्तों यही तो सिनेमा की खूबसूरती है. एक फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन उनका गीत, उसका किरदार, उसकी कहानी हमारे साथ रह जाती है ना. वैसे ही राकेश रोशन को याद कर रहे हैं आज. और बहुत से लोगों ने बहुत से सुंदर सुंदर खूबसूरत गानों की मांग की है जो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है. थैंक यू सो मच. सो बस ये जो गाना है जाएगा लालोगा के ज्ञानेश्वर जी, और वे कह रहे हैं जख्मी मूवी का ये गाना उनको बहुत पसंद है. सभी परिवार फ्रेंड्स के लिए और हमारे जो ऑरेंज रेडियो लिसनर्स हैं आप सबों के लिए, किशोरदा आशा जी की आवाज़ों में.

ये तमाम मूवी का गाना है और इस ये जो गाना है हमें ले जाएगा एक बजे के समाचार की ओर और लेट्स वेलकम मिस्टर मिसेस सुशील विज जो जलंधर पंजाब में है इंडिया से हमें सुन रहे हैं। हेलो

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति से अदिति आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम श्रोताओं को भी नमस्कार प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल शाम लंदन के लिए रवाना हुए यूके में वे शागस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल होंगे खासकर इस संबंध में मॉरिशस और यूके के बीच तय हुए समझौते को लागू करने के सिलसिले में हुई हालिया प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इस दौरे के अंतर्गत वे बरतानी प्रधानमंत्री दफ्तर के राष्ट्रीय सलाहकार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस दस्तावेज के साथ शुरू से जुड़े जोनाथन पावेल के साथ भेंट करेंगे पावेल को शागस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के साथ बातचीत के वास्ते बरतानी सरकार के खास दूत के तौर पर नियुक्त किया गया था डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियाना व मारी अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगी एमएमएम की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रेजवी में कल दल के समर्थक और अधिकारी आज एकत्र हुए एमएमएम के अध्यक्ष गिजाउद्दीन ने अपने संदेश में पार्टी के इतिहास की एक झलक पेश की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही सांप्रदायिकता खत्म करना रहा है उन्होंने कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा और मजबूत हैं गिजाउद्दीन ने कहा कि चुनावी प्रोग्राम को मात्र सरकार में रहकर ही लागू किया जा सकता है कनाडा में लग रहे साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंतर्गत हुई एलिट विमेन रोड रेस में हमारी हमवतन किम्बर्ली लोकोपियना ने 45वां स्थान लिया वो विजेता बनी नेदरलैंड्स की राइडर डेमी वॉलरिंग से 5 मिनट पीछे रही ये रेस किम्बर्ली के लिए काफ़ी मुश्किल रही फिनिश लाइन से 94 किलोमीटर पहले पेश आए एक हादसे में कई साइक्लिस्ट गिरे थे जिनमें किम्बर्ली भी शामिल थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक पर्यटन लॉज में हुए गैस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई है इनमें अमेरिकी मूल के 4 लोग और बरतानी मूल का एक व्यक्ति शामिल है इस भीषण धमाके के चलते 3 मंजिली वो इमारत ढह गई इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए आगे आ दीजिए नमस्कार
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3
3: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता
4: कुछ करने की जरूरत नहीं है हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे
3: फिर भी जरीन आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा
4: सोचने दो
3: बुरा मत मानना जरीन मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े और फिर यह भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ
4: फिरोज तुम मुझे प्यार करते हो
3: लेकिन जरीन सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता तुम बड़े घर की लड़की हो तुम्हारे डैडी
4: तुम मुझे प्यार करते हो
3: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले और
4: फिरोज तुम मुझे प्यार करते हो
3: प्यार तो करता हूँ जरीन बहुत प्यार करता हूँ लेकिन
4: प्यार करते हो ना
3: पर जरीन तुम
5: तुमसे मिला था प्यार कुछ अच्छे नसीब थे

0: RM3 Radio.
1: सुहाना सफर। जा 1:08 हो चुके हैं और आज संडे का दिन 27th of September 2026। और दोस्तों वेलकम बैक टू RM फ्री रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर प्रोग्राम में। और अगर आपको लगा कि राकेश रोशन स्पेशल का सफर अब खत्म होने वाला है तो जरा ठहरिए, क्योंकि सुहाना सफर में अभी एक और घंटा बाकी है उन पर पिक्चरस गाने चलाने के लिए। और हमारा प्लेलिस्ट जो है लगभग फुल हो चुका है, बहुत सारे गाने हैं, मस्त मस्त गाने हैं। और इस घंटे में हम और करीब से महसूस करेंगे उस सिनेमा को जिसमें कहानी है, संगीत है, इमोशंस हैं और भरपूर एंटरटेनमेंट। और मैं हूँ देवीना, MBC RM फ्री रेडियो मनोरंजन पर हर रविवार को आती हूँ सुहाना सफर प्रोग्राम में। तो चलिए फिर से रिवाइंड करते हैं और खोलते हैं बॉलीवुड की यादों की वो खूबसूरत किताब जिसके एक अहम अध्याय का नाम है राकेश रोशन। पराया धन मूवी का गाना हमने चलाया था पहले। और एक और रिक्वेस्ट आई है यहाँ पर अमृता जी, अनीता जी मोदालबिया की है, करुणा के लिए, हाँ जी अमृता के लिए, सभी दोस्तों के लिए फिल्म है पराया धन। और ये जो गाना है हमने चला दिया है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, मुलाकात तो हो रही है अभी, तो बस दूसरा गाना जो है आपके नाम करने वाले हैं किशोर दा और आशा भोसले की आवाज़ में। और ये गाना नवीन भाई, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो ये आपके लिए है नवीन जी। और ऑफ़ कोर्स जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने लोग राकेश रोशन के फैंस हैं,

जहाँ खाबों ख्यालों में खो जाते हैं और आज है स्पेशल रोशन जो है राकेश रोशन साहब और उनके सुपुत्र ऋतिक रोशन, कौन उनको नहीं जानता, बच्चे बच्चे लोग जानते हैं, उनके डांस को पसंद करते हैं, उनके गाने पसंद करते हैं, कहो ना प्यार है, हाँ जी आपसे प्यार है बिल्कुल, मगर आज ऋतिक रोशन की बात नहीं हो रही है बल्कि उनके पिताजी हैं राकेश रोशन साहब। एक बच्चर 25 मिनट हो चुका है और अब जो गाना हम बजाने वाले हैं उनका जो रिक्वेस्ट है बहुत लोगों ने की।

है। और ये जो गाना है कुछ ऐसा है कि हर एक सिचुएशन में ये गाना जब चलता है तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वैसे जब उनका जो फिल्मी करियर एज एन एक्टर दगमगाने लगा तो राकेश रोशन साहब ने क्या किया, ज़्यादातर अपने डायरेक्शंस पर फोकस किया और 80s के दशक में उन्होंने कुछ ऐसी फिल्में डायरेक्ट की जो सुपर हिट हुए जैसे कि खून भरी मांग, खुद गर्ल्स, किशन कन्हैया एक्सेट्रा। और आगे चलकर उन्होंने बहुत सी फिल्मों के का निर्देशन किया और ऐसे में खून भरी मांग इस फिल्म में नज़र आई थी रेखा एज ए सुपर वुमन। और उनका किरदार जो है बहुत लोगों ने खूब पसंद किया। काबिर बेदी थे, सोनू वालिया, और फिल्म के सभी गानों को लोगों ने भी वो पसंद किया, आज भी गुनगुनाते हैं एक साथ। और वैसे इस फिल्म के लिए रेखा जी को पुरस्कार भी मिला था। और ये जो गाना है हंसते हंसते कट जाए रस्ते, हाँ हमारा और आपका सफ़र यूँ ही हंसते हंसते गाते गाते गुनगुनाते गुनगुनाते कट ही जाएगा। और ये जो गाना है ख़ास तौर पर हमारी प्यारी सी करुणा जी हैं, करुणा शुमगनिये से, और लव यू टू, और स्पेशली फॉर हर बी राजेश और उनकी जो मामी हैं विमला सिबरन। ये गाना आपके लिए करुणा। और करुणा कह रही है कि उनको राकेश रोशन बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी दीवानी है। सो सभी गाने आपके लिए करुणा जी। और ऐसे में बन में ऐसे हैं शीला जी, वे भी कह रही हैं वाह वाह गानों का मज़ा ले रही हैं और मस्त मस्त गानों को सुनकर उनको बहुत मज़ा आ रहा है और उनका जो संडे है अच्छी तरह से बीत रहा है। थैंक यू शीला जी हमारा साथ देने के लिए, माकुना फैमिली के लिए और आपके सभी दोस्त और परिवार के लिए ये गाना। और साथ में जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप सफ़र में हैं तो हंसते हंसते आप सफ़र पर निकलिएगा और बी सेफ एंड बी हैप्पी। जा सोनाली सोनाली सना सरगम कोरस, ये गाना हंसते हंसते चलते हैं गुनगुनाते एक साथ।

जहां अलका याग्निक साथ में किशोर दा, फिल्म है कामचोर और नजर आए थे इसमें जया प्रधा और साथ में थे राकेश रोशन और ये गाना कामचोर मूवी का गाना हरीश बाबू और वो बस है आपके लिए आपके किसी खास के लिए भी

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: जा ये गाना हद के हैं राजेश रोशन राकेश रोशन से वो रिलेटेड नहीं है बल्कि ये गाना हमारी जो प्यारी सी श्यामा रघुनंदन जी हैं हमेशा आती हैं कुछ ना कुछ अपने लिए हमारे लिए भी थैंक यू सो मच और ये गाना उनके भाई साहब जयप्रकाश के लिए भाभी नम्रता केशव युधिष सहेलियां हैं वीना रामफुल विश्वानी दुखी नंदिनी ओकलू और साथ में उनकी जो प्यारी सी बहन है विजयंती जी आई है बेल्जियम से और खास तौर पर सभी लिसनर्स के लिए कचरा मोहब्बत वाला

जो वेलकम टू ऑरेंज फ्री रेडियो मनोरंजन सुहाना सफर प्रोग्राम देवीना है आपके संग और हम बात कर रहे हैं राकेश रोशन साहब वैसे थैंक यू सो मच हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पर जो है हाँ जी नाम है किरणपुरी जी और हम हमें मैसेजेस भेज रहे हैं एंड डोंट फॉरगेट हिज यंगर ब्रदर ऑफ कोर्स

राकेश रोशन के छोटे भाई जो हैं म्यूजिक डायरेक्टर, वो सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं राजेश रोशन साहब। साथ में हम आपको बता देते हैं कि राकेश रोशन जी और राजेश रोशन साहब के पिताजी थे म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर रोशन लाल नगरत, और उनका जो सभी लोग जानते थे रोशन से, और उन्हों जो थे वे एक्टिव रहे 1950s, 1960s और 1967 में वे स्वर्गवास हो गए।

साहब परपीचर आज एक और बहुत ब्यूटीफुल सा गाना हम पेश करने वाले हैं और इसमें उनके साथ नजर आए थे ऋषि कपूर साहब. आपने अंदाजा लगा लिया किशोरदा की आवाज़ में, अमित कुमार साहब की आवाज़ में फिल्म है आपके दीवाने और ये गाना मुझे भी बहुत बेहद पसंद है और ये गाना जाएगा बाबू अनतवा जी के लिए. हाँ जी, आपके दीवाने हैं मूवी का ये गाना आपको पसंद है और अनतवा पूरी अनतवा फैमिली के लिए और आप अभी शॉप में हैं सो हमारा साथ दे रहे हैं. थैंक यू सो मच. John, let's wish a very happy birthday अक्षय को. अक्षय का जन्मदिन है और उनको विश कर रहे हैं पापा राजन, मामा निर्मला, भाई अमन. तो अक्षय, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा एंड विश यू लॉट्स ऑफ लव, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड बी गुड, डू गुड. और ये गाना आपके लिए भी, बस ये गाना हम साथ में गुनगुनाते हैं.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: फिल्म है सीमा और इसमें जो है यहाँ यह गाना जो है पिक्चराइज ऑन राकेश रोशन और ये जो मैसेज है ना ये है किसकी ओर से देखते हैं हाँ अंजनी जी और कह रही हैं ब्यूटीफुल सा मैसेज आपने भेजा है यहाँ पर आप कह रही है सीमा में एक गाना है हाँ जी लड़की चले जब सड़कों पे और ये गाना हम चला रहे हैं आपके लिए यह गाना राकेश रोशन पर फिल्माया गया था इस फिल्म में सीमी जी भी नज़र आई थी ओके थैंक यू धन्यवाद आपको सो बस इसको एंजॉय कीजिए

बिल्कुल थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। और बस देखते देखते राकेश रोशन का सफ़र हमें हिंदी सिनेमा के कई अलग अलग दौरों से होकर गुजरता है। हमें ले गए राकेश रोशन की दुनिया में एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक स्टोरी टेलर और एक ऐसी सिनेमैटिक फैमिली जर्नी जिसमें अगली पीढ़ी भी पर्दे पर दिखाई दी। आज के इस दो घंटे के दौरान आपने सुने राकेश रोशन स्पेशल और उनके अभिनय के दौर से लेकर निर्देशन, म्यूजिक, रोमांस, एक्शन और फैंटेसी तक कई रंगों को याद किया। और अब वक्त है इस खूबसूरत दोपहर को एक और प्यारे गीत के साथ आगे बढ़ाने का। यही गाना जो है ले जाएगा 2 बजे के समाचार की ओर और फिल्में ख़त्म हो जाती हैं लेकिन अच्छी कहानियाँ और अच्छे गीत हमारे दिल में हमेशा चलते रहते हैं। इसे खूबसूरत एहसास के साथ सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत के साथ जुड़े रहिए। और 2 बजे के बाद 90s वाले गाने और आज हैं यश चोपड़ा डायरेक्टर जो हैं, यश चोपड़ा उनका जन्मदिन है और उन पर पिक्चराइज जो वो पिक्चराइज नहीं उनकी जो बनाई हुई फिल्मों के गाने आपको सुनाने वाले हैं 2 बजे के बाद। हमारे साथ जुड़े रहिए आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। और इस गाने में नाम जोड़ते हैं सुदेवी जी का, मौका से है बच्चों के लिए, परिवार के लिए। सुदेवी जी, एंजॉय।

जवान कुवे में अभी बहुत हो गया है 3 बजे सवेरे के, और हमें हमारे साथ हैं लाल जी, और थैंक यू सो मच आपको शुभरात्रि, आप की को अच्छी नींद आए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए, थैंक यू सो मच।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार अंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम कल शाम लंदन के लिए रवाना हुए। यूके में विषागस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल होंगे, खासकर इस संबंध में मॉरिशस और यूके के बीच तय हुए समझौते को लागू करने के सिलसिले में हुई हालिया प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरे के अंतर्गत विवर्तानी प्रधानमंत्री दफ्तर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस दस्तावेज के साथ शुरू से जुड़े जोनाथन पावेल के साथ भेंट करेंगे। पावेल को शागस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के साथ बातचीत के वास्ते बरतानी सरकार के खास दूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अगियाना बोमागी अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगी। शोमेघोनी का बाजार अब एक नई जगह पर स्थित है। दक्षिणी प्रांत के विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए एक बिल्कुल नई इमारत तैयार हुई है। सब्जी फूल से लेकर कपड़े और खाने पीने के सामान वहां सब उपलब्ध किए जाएंगे। इस परियोजना का मकसद है विक्रेताओं को काम करने का उचित माहौल प्रदान करना। एमएमएम की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रजुई में दल के समर्थक और अधिकारी एकत्र हुए। एमएमएम के अध्यक्ष गैसा उतीम ने अपने संदेश में पार्टी के इतिहास की झलक पेश की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही सांप्रदायिकता खत्म करना रहा है। उन्होंने कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा और मजबूत है। गैसा उतीम ने कहा कि चुनावी प्रोग्राम को मात्र सरकार में रहकर ही लागू किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूसी और यूक्रेनियन ताकतों के बीच हुए सिलसिलेवार ड्रोन और मिसाइल हमलों में पिछले 24 घंटों के दौरान कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ समय से कीव और मॉस्को दोनों की तरफ से महत्वपूर्ण ढांचों को निशाना बनाकर लंबी दूरी के हमले किए जा रहे हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने आम नागरिकों के मारे जाने की बढ़ती संख्या को लेकर चेतावनी दी है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार
2: on NBC Play and NBC.mu.
1: शोक समाचार सुनिए। सैपल रोड फिनिक्स में विनर सुपरमार्केट के सामने 67 साल के 67 years old श्री अशोक दुमन जो अशोक नाम से ज्यादा जाने जाते थे और फिशरीज विभाग के पूर्व अफसर थे, इनकी मृत्यु हो गई है। केयर थी आज दिन के 3 बजे की अर्थी आज दिन के 3 बजे की पत्नी श्रीमती विदुषी दुमन के मकान सैपल रोड फेनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलेभैयाओं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डिया 3 PM। देवेग गली ग्लेनपॉक वाकवा में 77 साल के 77 ईयर्स ओल्ड श्री बाला सुब्रमण्य पाति जो किसना नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती जेंसी पाती के मकान देवेग गली ग्लेन पॉक वाकवा से उठा कर अंतिम संस्कार के लिए सल्फेरिनो वाकवा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 10 AM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
3: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

जवान कलबा का दो बजकर 10 मिनट हो चुके हैं आज संडे का दिन 27 सितंबर 2026 और एक बार फिर से हमारा प्यार भरा नमस्कार है और अब हमने कदम रख दिया है 90s के सफर में आप सुन रहे हैं MBC और एम फ्री

मनोरंजन और मैं हूँ देवीना, लेकर आई हूँ एक ऐसा सफर जहाँ मोहब्बत है, संगीत है, खूबसूरत वादियाँ हैं और हैं वो कहानियाँ जो दिल को छूकर हमेशा के लिए याद बन जाती हैं। जी दोस्तों, आज का हमारा सुहाना सफर समर्पित है उस जादुई फिल्मकार को जिसने हिंदी सिनेमा में प्यार को सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि उसे एक खूबसूरत एहसास बना दिया है। आज बात होगी यश चोपड़ा की। वैसे आज उनका हैप्पी बर्थडे है, तो यश चोपड़ा जी जहाँ भी हो, हम जानते हैं आपने अपना छाप छोड़ रखा है हिंदी सिनेमा में, तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अगले एक घंटे में हम चलेंगे सरसों के खेतों से लेकर बर्फीली वादियों तक, बारिश की बूंदों से लेकर चांदनी रातों तक, और सुनेंगे यश चोपड़ा की फिल्मों के ये सदाबहार नगमे जिनमें आज भी मोहब्बत सांस लेती है। तो फिर लम्हे मूवी का गाना कौन पसंद नहीं करता है, वो लम्हे ये पल हम हमेशा याद रखेंगे। तो ये गाना जाएगा राइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। पूनम आई हुई है मॉरिशस में, वेलकम पूनम, एंड शी इज़ विजिटिंग पुपू आता रोजबेल मीना मौसी जो है आपके नाम भी। ये अगला गाना रीता है, विक्रम, विकास, शीतल और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी युवानेश। ये गाना आपके लिए।

जय दोस्तों, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज यश चोपड़ा, हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। पूरा नाम यश राज चोपड़ा और उनका जन्म 27 सितंबर यानी कि आज हुआ था 1932 में लाहौर, ब्रिटिश भारत, और उनका निधन वे चल बसे 21 अक्टूबर 2012 में 2012 में मुंबई, भारत में। और यश चोपड़ा ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत आईएस जौहर के सहायक के रूप में की थी। उन्होंने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के बैनर के साथ कई सफल फिल्मों का निर्देशन किया। साल 1959 में आई फिल्म धूल का फूल उनकी बतौर निर्देशक पहली फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1970 में अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी यश राज फिल्म्स की नींव रखी। यह कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी फिल्म निर्माण कंपनियों में से एक है। वैसे अगर प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो यश चोपड़ा ने अपने 5 दशक लंबे करियर में कई सुपरहिट और यादगार फिल्में बनाई, जैसे वक्त 1965 में, दीवार 1975 में, कभी कभी 1976, चांदनी 1989, डर 1993, दिल तो पागल है 1997, वीर जरा 2004, और जब तक है जान 2012 में उनका आखिरी फिल्म था। तो सम्मान और पुरस्कार की बात हो तो उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और साथ में 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उनको। उन्हें अपने शानदार निर्देशन के लिए कई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड्स और साथ में फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। तो आज यश चोपड़ा के कुछ खास फिल्मों के गाने आपके लिए, आपके नाम सुहाना सफर प्रोग्राम में आप सबों के साथ देवीना 3 बजे तक।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: ये दिल लगी अक्षय कुमार साहब साथ में थे सैफ अली खान साहब और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश जौहर ने यश चोपड़ा ने ओके सो बस ये गाना goes to Avinash and Kishan who are at Kobe right now. Abhijit और साथी कलाकार

जी नहीं, मैं किरण नहीं, मैं हूँ देविना। यहाँ पर आप साथ दे रहे हैं और इस सुहानी सी शाम में, संडे आफ्टरनून में आप क्या कर रहे हैं? बस हमारा साथ दे रहे हैं, चाय पी रहे हैं और हमें भी याद कीजिएगा चाय पीते समय, क्योंकि इसके बाद हम भी चाय पीने जाएंगे। और इस संडे आफ्टरनून में आपको अच्छा लग रहा है हमारे गाने, आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप गुनगुना रहे हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बस हैव ए नाइस संडे आफ्टरनून। और हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा, द ग्रेट फिल्म मेकर, जिन्होंने अपना छाप छोड़ा है बॉलीवुड में। और आपने अभी सुना डर मूवी का गाना, कौन ये गाना पसंद नहीं करता, मुझे तो बहुत पसंद है भाई। और ये जो गाने हैं कि जितना सुने उतना कम है। और कुछ हद कर अब चलते हैं कभी खुशी कभी गम मूवी का गाना जो है सुनना चाह रही हैं यहाँ पर हमारी जो प्यारी सी शोभा है लाल माची से। बस आपके लिए शोभा जी, हमारे लिए भी और सभी लिसनर्स के लिए ये गाना, क्योंकि सूरज ढलने में अभी समय बाकी है मेरे दोस्त, मगर फिर भी ये गाना सुनने में हर्ज क्या है। इस गाने को एन्जॉय कीजिए, फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम, सोनी निगम साथ में अलका याग्निक का।

0: RM3 Radio.
1: जहाँ 2:53 हो चुका है और संडे का जो स्पेशल शो है अब खत्म होने वाला है। आज का हमारा सुहाना सफ़र यश चोपड़ा और 90s स्पेशल यही अपने अगले पड़ाव पर पहुंच गया है, यानी कि बाय-बाय कहने का समय आ गया है। लेकिन 90s की यादें वो कभी नहीं जाती, क्योंकि कुछ गीत पुराने नहीं होते दोस्तों, बस हमारी उम्र बदलती है, गीतों का जादू नहीं। मैं हूं देवीना और आपसे देती हूं इजाज़त। और 3 बजे आप सुन पाएंगे समाचार और इसके बाद आरजे प्रताप सिंह आने वाले हैं। जुड़े रहिए MBC और RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। और याद रखिए, पुराने गीत, पुरानी यादें और दिल की पुरानी धड़कनें, इनका रिश्ता हमेशा सुहाना रहता है। और आपको भेजते हैं ढेर सारा प्यार। आपका जो वीक आने वाला, जो वीक है, वीक डेज है, सुहाना हो, अच्छा हो। आप अपना ख्याल रखिए। हैव ए नाइस संडे इवनिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। ये गाना आप सबों के नाम करते हैं।

0: अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अदिति के साथ। आपको नमस्कार अदिति।
1: नमस्कार हंसिनी, श्रोताओं को भी नमस्कार। एमएमएम की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ मनाने के लिए रिजवी में दल के समर्थक और अधिकारी एकत्र हुए। एमएमएम के अध्यक्ष गिजाउद्दीन ने अपने संदेश में पार्टी के इतिहास की एक झलक पेश की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही सांप्रदायिकता खत्म करना रहा है। उन्होंने कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा और मजबूत है। गिजाउद्दीन ने कहा कि चुनावी प्रोग्राम को मात्र सरकार में रहकर ही लागू किया जा सकता है। श्रीमैगोनिये का बाजार अब एक नई जगह पर स्थित है। दक्षिणी प्रांत के विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए एक बिल्कुल नई इमारत तैयार हुई है। सब्जी, फूल से लेकर कपड़े और खाने पीने के सामान वहां सब उपलब्ध हैं। इस परियोजना का मकसद है विक्रेता

0: आवश्यकताओं को काम करने का उचित माहौल प्रदान करना। कनाडा में लग रहे साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंतर्गत हुई एलिट वुमेन रोड रेस में हमारी हमवतन किम्बर्ली लेकोपियन ने 45वां स्थान लिया है। वो विजेता बनी नेदरलैंड्स की राइडर डेमी वॉलरिंग से 5 मिनट पीछे रही। ये रेस किम्बर्ली के लिए काफ़ी मुश्किल रही। फिनिश लाइन से 94 किलोमीटर पहले पेश आए इस हादसे में कई साइक्लिस्ट गिरे थे, जिनमें किम्बर्ली भी शामिल थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक पर्यटन लॉज में हुए गैस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई है। इनमें अमेरिकी मूल के 4 लोग और बर्तानी मूल का 1 व्यक्ति शामिल है। इस भीषण धमाके के चलते 3 मंजिली वो इमारत ढह गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। सुबाची रोड बोनाकई में में 56 साल के 56 ईयर्स ओल्ड श्री रवीन झन्ना जो एनटीसी के चालक थे और मुनू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे इनकी पत्नी श्रीमती दीपा की सुंदुयाल झन्ना के मकान सुबाची रोड बोनाकई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 8 अगस्त नून। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
5: La MBC se réinvente et vous accompagne désormais partout. Retrouvez toute la richesse des contenus de la MBC sur nos nouvelles plateformes digitales. Avec MBC Now, notre nouvelle page Facebook, restez connectés à l'actualité, découvrez les temps forts de nos émissions et ne manquez aucune nouveauté. Avec l'application mobile MBC Play ainsi que notre nouveau site web mbc.mu, regardez vos chaînes TV en direct, écoutez vos radios préférées en live, suivez le JT, les courses hippiques, consultez la programmation et profitez du replay où que vous soyez, à la maison, au bureau ou en déplacement, la MBC est désormais accessible sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou votre Smart TV. MBC Now, MBC Play, MBC.mu, toute la MBC partout avec vous. Plus d'infos sur le 402 8000.

0: ऐसा भी होता है ऑन RM3।
1: लगता है कि इंसान इंसानियत भूल चुका है। इंसान ने अपने जमीर को मार डाला है। बात बात पे इंसान भड़क उठता है। उसके दिल में न दया है न किसी के लिए हमदर्दी। जो उसके मन में आता है वो वही करता है। कौन समझाएगा इंसान को? कोई नहीं। अद्भुत है इंसान और अद्भुत है उसके कर्म। ऐसे में प्रस्तुत है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है और जी प्रताप सिंह सितालू के साथ अभी शाम के 3 बजे से शाम के 4 बजे तक ऑन RM3 MBC रेडियो मनोरंजन। रहस्यमय दुनिया में खो जाने के लिए हो जाइए तैयार। 1 घंटे तक आपको साथ देना है शाम के 4 बजे तक। और अद्भुत सनसनी खबरों का पिटारा हम खोलेंगे इस गीत के बाद। चलिए पहले इस गीत को सुनते हैं और इस गीत के बाद हम आपको सुनवाएंगे अद्भुत सनसनी खबरें।

को जन्म देने वाला पिता। दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

एक सितारा हमेशा के लिए बुझ गया। जी हां, 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत द न्यूकमर इन बॉलीवुड, उनकी मृत्यु बहुत ही रहस्यमय स्थिति में हुई। सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने घर में मृत पाए गए। शुरुआती पुलिस से जांच और पोस्टमार्टम की मौत को फांसी से हुई मौत बताया गया और मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या के रूप में जांचना शुरू किया। फिर जुलाई 2020

20 पे परिवार की शिकायत और रिया चक्रवर्ती पर आरोप सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने आर्थिक अनियमितताओं आदि के आरोप लगाए थे ये आरोप थे साबित तथ्य नहीं फिर 19 अगस्त 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का रास्ता साफ किया और महाराष्ट्र को जांच में सहयोग करने को कहा सितंबर अक्टूबर 2020 में एआईएमएस की फोरेंसिक जांच के विशेषज्ञों ने उपलब्ध पोस्टमार्टम विसेरा और अन्य फोरेंसिक सामग्री की समीक्षा की रिपोर्ट से जुड़ी सार्वजनिक जानकारी के अनुसार टीम को हत्या का सबूत नहीं मिला और निष्कर्ष आत्महत्या में अनुरूप था 2020 में एक बार फिर ईडी और एनसीबी की अलग जांच ईडी ने कथित फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच की और एनसीबी ने ड्रग्स रिलेटेड मामले में जांच शुरू की रिया चक्रवर्ती को एनसीबी मामले में गिरफ्तार किया गया बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें बेल दी यह ड्रग केस सुशांत सिंह की मौत के मुख्य सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से अलग था फिर 2021 से 2024 में सीबीआई जांच जारी रही कई साल तक सीबीआई ने सार्वजनिक रूप से अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया 2023 में सीबीआई ने न चार्जेस शीट दाखिल की थी न केस क्लोजर रिपोर्ट मार्च 2025 में सबसे बड़ा आधिकारिक अपडेट सीबीआई ने बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की रिपोर्ट में कहा गया कि उपलब्ध जांच सबूतों के आधार पर यह सिंपल केस ऑफ सुसाइड था और रिया चक्रवर्ती उनके परिवार तथा अन्य नामित लोगों के खिलाफ सुशांत सिंह को आत्महत्या के लिए उकसाने का पर्याप्त आधार नहीं मिला इसका मतलब है कि सीबीआई ने हत्या या फाउल प्ले को साबित करने वाला सबूत नहीं पाया हालांकि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होना अपने आप में अदालत द्वारा अंतिम न्यायिक फैसला नहीं होता अदालत का रिपोर्ट पर आदेश देना होता है फिर सुशांत सिंह के मृत्यु से 6 दिन पहले 8 जून 2020 को उनकी फॉर्मर मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई थी दोनों घटनाओं को जोड़कर कई थ्योरी सामने आई लेकिन सुशांत सिंह मामले की जांच में ऐसा सबूत नहीं आया कि जिसमें दोनों मौतों के बीच आपराधिक संबंध स्थापित हो और लेकिन सितंबर 2026 में एक नया महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिशा सालियान की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया और सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच करने को कहा कोर्ट ने साथ ही स्पष्ट किया कि जांच में पर्याप्त सामग्री मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं मानना चाहिए तो अभी असल स्थिति क्या है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मुख्य मामले में सीबीआई का निष्कर्ष है आत्महत्या हत्या का प्रमाण सीबीआई को नहीं मिला रिया चक्रवर्ती आदि के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का पर्याप्त आधार सीबीआई को नहीं मिला 2025 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और दिशा सालियान मामले में सितंबर 2026 में मुंबई हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया यह नया इन्वेस्टिगेशन है और इसे निष्कर्ष नहीं मिलता है कि सुशांत सिंह की हत्या की गई थी या दोनों मौतों आपस में जुड़ी थी पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं हो सकती उनके पिता का कहना है कि उसके बेटे को जान से मार दिया गया है अब जांच अभी जारी है सो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता पर सुशांत सिंह के पिता और उनके परिवार का ये कहना है कि उनका बेटा ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकता क्योंकि कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं था जहां पर सुशांत सिंह ने अपने परिवार को बताया हो कि वह डिप्रेशन में था या क्या कुछ था अब भी उसके पिताजी का कहना है कि वह नहीं मानता है कि उसके बेटे ने आत्महत्या की होगी वह सच्चाई के तहत तक पहुंचना चाहता है और उसे न्याय चाहिए और अगर किसी ने उसके बेटे की हत्या की है तो उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ये उनका पिता का कहना है अब इस मामले में हम क्या कह सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा अभी रिसर्च सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पर ज़रा सोचिए उस पिता पर क्या बीता होगा जब उसने उसे पता चला होगा कि उसका बेटा जो फेमस बॉलीवुड स्टार था उसने या तो आत्महत्या की या उसे जान से मार दिया गया जी हाँ सुशांत सिंह राजपूत वॉज ए वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर बॉलीवुड की दुनिया में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया था और

he was very talented, you know, he was very versatile, very talented, very बहुत हंसमुक थे, very humble थे और उनके बहुत सारे fans थे. और जिस दिन सुशांत सिंह की मौत हुई उस दिन पूरा बॉलीवुड सदमा में चला गया और बहुत से लोग जो है डिप्रेस हो गए. उन्हें पता, वो लोग आज भी जब लोग सुनते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है तो लोग मानना नहीं चाहते हैं कि आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है. वर्ल्ड स्विच तो वक्त ही बताएगा कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था, क्या उसने आत्महत्या की थी या किसी ने उसे मारा था, ये तो वक्त ही बताएगा. पर दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है.

किसी ने क्या खूब कहा है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब केवल अपने मतलब के लिए जीते। ऐसा ही केस हुआ था परवीन बेबी के साथ। ये ऐसे बॉलीवुड की सुपरस्टार परवीन बेबी ने बॉलीवुड की दुनिया में काफ़ी नाम और शोहरत कमाया, पर जिस तरह से उनकी मौत हुई दैट वॉज वेरी टेरिबल। जी हाँ, और 20 जनवरी 2005 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनका शव मुंबई के जुहू स्थित फ्लैट में 22 जनवरी को मिला। जब कई दिनों तक अखबार और दूध बाहर पड़े रहे, वे उस समय अकेली रहती थी और लंबे समय से सार्वजनिक जीवन से काफ़ी दूर थी। पोस्टमार्टम में किसी चोट, गला घोंटने या जहर के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले। पुलिस ने उस समय ये फाउल प्ले की संभावना खारिज की थी। परवीन बेबी को डायबिटीज़ थी और गैंग्रेन की समस्या भी। रिपोर्टों के अनुसार उनके पेट में भोजन नहीं मिला था और पुलिस मेडिकल निष्कर्षों में डायबिटीज़ या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को मृत्यु से जोड़ा गया। उनके फ्लैट में व्हील चेयर, दवाइयाँ और अन्य सामान मिला था, जिसे यह संभावना बताई गई थी कि आखिरी दिनों में वो चलने फिरने में कठिनाई हो रही थी। फिर इसे रहस्यमय या मौत क्यों कहा जाता है? परवीन बेबी ने जीवन के अंतिम वर्षों में कई बार दावा किया था कि कुछ परवीन बेबी ने जीवन के अंतिम वर्षों में कई बार दावा किया था माफ़ कीजिए कि कुछ लोग उन्हें नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उनकी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके अकेले जीवन को लेकर भी उस समय काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन उन दावों को उनकी हत्या का प्रमाण नहीं माना गया और उपलब्ध पुलिस पोस्टमार्टम रिकॉर्ड में हत्या का सबूत नहीं मिला। सर परवीन बेबी जो है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा थी, पर अंतिम समय में किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, ना कोई प्रोड्यूसर, ना फिल्मी डायरेक्टर, ना कोई दोस्त, ना कोई कोस्टार। हालांकि अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था और लोग कहते थे कि उनका काफ़ी अभी था उनके साथ, पर अंतिम समय में जब वो बीमार पड़ी तो बॉलीवुड का कोई भी सितारा उसके पास नहीं था। बेचारी अकेले ही अपने फ्लैट में अपने बिस्तर पर लेते लेते उसने अपने प्राण त्याग दिए। सो जैसे हम देखते हैं टीवी पर बॉलीवुड की चमक दमक कि हेलो हाय बाय बाय, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हग करते हैं, ये सब दिखावा होता है दोस्तों। अंत समय में कोई किसी का साथ नहीं देता। परवीन बेबी

के जीवन में क्या कमी थी, शान, शोहरत, धन दौलत सब कुछ था, पर अंत समय में कोई परिवार भी नहीं, किसी परिवार ने भी उसका साथ नहीं दिया, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना बॉलीवुड का कोई स्टार। ऐसे तो जब फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं तो देखते हैं कैसे एक सितारा दूसरे सितारा से मिलता है, हाय हेलो कहता है, पर ये सब दिखावा ही होता है, क्योंकि अंत समय में परवीन बेबी जिस तरीके से उसकी मौत हुई तो बहुत ही दर्दनाक तरह से उसकी मौत हुई, क्योंकि उसका जो जब मृत्यु हुई तो उसका शरीर सड़ने लगा था और दूध वाला रोज़ एक बोतल दूध छोड़ देता था सुबह। तो तीन चार दिन के बाद जब दूध वाला ने देखा कि दूध का बोतल बाहर है, चार बोतल बाहर है, तो उसने सोचा कि परवीन बेबी ने आखिर दूध का बोतल क्यों नहीं लिया। फिर दरवाज़ा खटखटाया और पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस आया, जब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो उस कमरे से बहुत बदबू आ रही थी, जैसे किसी सड़ने की चीज़ हो। यस, द बॉडी ऑफ द कॉर्प्स ऑफ परवीन बेबी वॉज डिकम्पोजिंग। जहाँ और इस को लेकर जो है ये कहा जाता है कि किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। शायद अगर कोई साथ होता तो परवीन बेबी की जान बची जा सकती थी, पर अफसोस इतनी खूबसूरत अदाकारा आज हमारे बीच नहीं है। जब हम सुनते हैं किस तरह से उसकी मौत हुई है तो हम अपने आप से पूछते हैं कि दुनिया का चकाचौंध इतना भी हो सकता है, पर अंत समय में कोई साथ नहीं देता है। वाह रे दुनिया वालों, वाह रे दुनिया वालों, कैसी दुनिया है ये और यहाँ पर कैसे लोग हैं।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

हमारे समंदर में अजीबो गरीब चीज है, क्रिएचर्स है हमारे समंदर में, उन्हीं में से एक मछली है सी होर्स, जिसे हम फ्रेंच में इपोकॉम्प या शिवाल दे मिया कहते हैं। यह मछली ही है, जी हाँ, सी होर्स देखने में घोड़े जैसा उसका सिर है, पर शरीर मछली की तरह है। यह गिल्स से सांस लेता है, फिन्स से तैरता है और पानी में रहता है। इसका शरीर बहुत अजीब होता है। इसका शरीर हड्डी जैसी कठोर प्लेटों से ढका होता है। दूसरी मछलियों की तरह इसके शरीर पर सामान्य स्केल्स नहीं होते। बाप रे बाप। इसका सिर घोड़े के सिर जैसा दिखता है, इसी वजह से इसको

सी होर्स इसका नाम पड़ा। इसकी लंबी नली जैसी स्नाउट होती है और उसकी पूंछ बहुत काम की होती है। उसकी पूंछ पकड़ने वाली प्रहेंसिल होती है। यह समुद्री घास, कोरल या दूसरी चीज़ों को पूंछ से पकड़कर तेज धाराओं में खुद को स्थिर

एक आंख आगे और दूसरी आंख दिशा में देखकर शिकार तथा आसपास के खतरे पर नजर रख सकती है। यह बहुत तेज तैराक है। सीहोर्स की स्विमिंग क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर होती है। उसकी छोटी डॉर्सल फिन बहुत तेजी से फरफराती है, जिससे यह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इसलिए यह अक्सर किसी पौधे को पकड़कर वहीं रहने की रणनीति अपनाता है। सीहोर्स क्या खाता है? मुख्यतः वह छोटे समुद्री जीव खाता है, जैसे श्रिंप, झींगे, छोटे प्लांक्टोनिक जीव और फिश लावा। इसके दांत नहीं होते हैं। वह अपनी लंबी स्नाउट से पानी और छोटे शिकार को सक्शन करके अंदर खींच लेता है। एक दिलचस्प बात यह है कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत तेज है, इसलिए इसे दिन में बार बार खाना पड़ सकता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि नर सीहोर्स प्रेग्नेंट होता है। यस, जो मछली सीहोर्स मेल होता है वो प्रेग्नेंट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मेल कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो होता है मछलियों में, ये मछली है सीहोर्स और जो मेल है वो प्रेग्नेंट होता है। यह इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। नर और मादा मेटिंग के दौरान करीब आते हैं। मादा अपने एग्स नर की ब्रूड पाउच में डालती है। नर उन अंडों को अपनी पाउच में रखता है। एम्ब्रियोज वहीं विकसित होता है। कुछ समय बाद छोटे छोटे बेबी सी हॉर्सेस को पानी में छोड़ता है, यानी बच्चों को जन्म देने का काम पर नर सी हॉर्स का होता है। जो मेल सी हॉर्स होता है वो बच्चों को जन्म देता है। भाप रे भाप। हालांकि इसे इंसानी की प्रेगनेंसी से बहुत समान नहीं समझा चाहिए। यह समुद्री घोड़ों की विशेष रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है। जब बच्चे पाउच से बाहर निकलते हैं तो बहुत छोटे होते हैं और उन्हें जीवन लगभग स्वतंत्र रूप से शुरू करना पड़ता है। नर उन्हें बाहर निकालने के बाद सामान्यतः उसकी देखभाल मामल्स की तरह नहीं करता। रंग बदलने की क्षमता। कई सीहोर्स स्पीसीज अपने आसपास के वातावरण के अनुसार रंग बदल सकती है। उसका उपयोग कैमुफ्लाज, कम्युनिकेशन और मेटिंग बिहेवियर में भूमिका निभा सकता है। और सीहोर्स में मेटिंग बिहेवियर काफ़ी जटिल हो सकता है। कुछ स्पीसीज में नर मादा लंबे समय तक पे एसोसिएशन रखते हैं। वे मेटिंग से पहले विशेष कोर्टशिप डांस भी करते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ तैरते हैं और शरीर का रंग भी बदल सकता है। सीहोर्स दुनिया के कई गर्म और टेम्परेट समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है और वे अक्सर इन हैबिटेट्स में रहते हैं। समुद्री घास, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ, शालो कोस्टल वाटर्स, समुद्री पौधे वाले क्षेत्र। और क्या सीहोर्स इंसान के लिए खतरनाक होता है? नहीं, सीहोर्स मछली इंसानों के लिए खतरनाक बिल्कुल नहीं है। इसका भोजन छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, जिसे हम चिखवित कहते हैं, झिंग कहते हैं, और यह आमतौर पर शांत स्वभाव का होता है। और सीहोर्स को खतरे क्यों है? कई क्षेत्रों में उनके सामने मुख्य समस्याएं हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, समुद्री प्रदूषण, एक्सीडेंटल फिशिंग, कुछ जगहों पर अत्यधिक कलेक्शन या क्लाइमेट चेंज और समुद्री इकोसिस्टम का बदलाव। इसी कई सीहोर्स स्पीसीज में संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि प्रकृति में बहुत कम जानवर ऐसा होता है जिसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलता है, जिसमें ऑफस्प्रिंग को अपनी विशेष पाउच में विकसित करता है। सीहोर्स उसी वजह से मारीन बायोलॉजी का बहुत दिलचस्प उदाहरण है। सो याद रखिएगा, यह जो सीहोर्स फिश है, जो इपोकॉम्प है, शिवाल दुमेर है, इसका जो मेल मछली होता है वही बच्चा पैदा करता है। दुनिया में ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा भी होता है। अब लोग सोच रहे, भाई प्रताप जी, यह मछली मेल है तो बच्चा कैसे पैदा करेगा? इसे भगवान ने ऐसा बनाया है दोस्तों, और भगवान का जो बनाया चीज़ है इसे कोई बदल नहीं सकता। और मॉरिशस में सीहोर्स फिश है, जी हाँ, कई म्यूजियम्स में भी हमने देखे हैं। और यह मछली जो है, इसका सर जो है घोड़े की तरह होता है और शरीर मछली की तरह। सोशल मीडिया पर जाते, इंटरनेट पर जाएगा तो जरूर टाइप कीजिएगा सीहोर्स फिश, आप देख पाएंगे कैसे ये मछली होता है। बहुत ही अजीब मछली है ये। ए है।

कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, कितने अजीब लोग हैं और कितनी अजीब दुनिया है। और इन्हीं बातों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। ऐसा भी होता है, कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। 4 बजे होगा फ्लैश न्यूज़, उसके बाद डॉक्टर पूनम साहब सुनेंगी फिल्मी गज़ल, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। शाम के 3 बजे से हमारा साथ देंगे। शुक्रिया करम।

मेहरबानी। हमारी आपकी मुलाकात होगी मंगलवार की रात को 9 बजे से 12 बजे तक ऑन रेडियो मॉरिशस एंड रेडियो मनोरंजन। प्रोग्राम होगा बहुत छोटी तर का, सो तब तक हमें इजाज़त दीजिए। और जी प्रताप सिंह सिदारू की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बॉन वीकेंड, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music.
3: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम कल शाम लंदन के लिए रवाना हुए। यूके में वे शागस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बातचीत में शामिल होंगे, खासकर इस संबंध में मॉरिशस और यूके के बीच तय हुए समझौते को लागू करने के सिलसिले में हुई हालिया प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरे के अंतर्गत वे बर्तानी प्रधानमंत्री दफ्तर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस दस्तावेज के साथ शुरू से जुड़े जोनाथन पावल के साथ भेंट करेंगे। पावल को शागस द्वीप समूह को लेकर मॉरिशस के साथ बातचीत के वास्ते बर्तानी सरकार के खास दूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियान नावामारी अंतरिम रूप से प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगी। एमएमएम की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ मनाने के उद्देश्य से रेजवी में दल के समर्थक और अधिकारी रेजवी में एकत्र हुए। एमएमएम के अध्यक्ष गैजाउद्दीन ने अपने संदेश में पार्टी के इतिहास की एक झलक पेश की और कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ही सांप्रदायिकता समाप्त करना रहा है। उन्होंने कहा कि एमएमएम एक ऐसी पार्टी है जहां लोकतंत्र पूरी तरह से जिंदा और मजबूत है। गैजाउद्दीन ने यह भी कहा कि चुनावी घोषणा पत्र को मात्र सरकार में रहकर ही लागू किया जा सकता है। श्रीमेघालय का बाजार अब एक नई जगह पर स्थित है। दक्षिणी प्रांत के विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए एक बिल्कुल नई इमारत तैयार हुई है। सब्जी, फूल से लेकर कपड़े और खाने पीने के सामान वहां सब उपलब्ध है। इस परियोजना का उद्देश्य है विक्रेताओं को काम करने का उचित माहौल प्रदान करना। कनाडा में लग रहे साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंतर्गत हुई एलिट वुमेन रोड रेस में हमारी हमवतन किम्बर्ली लेकोपिनिया ने 45वां स्थान प्राप्त कर लिया है। वो विजेता बनी। नेदरलैंड की राइडर डेमी वोलरिन से 5 मिनट पीछे रही। ये रेस किम्बर्ली के लिए काफी मुश्किल रही। फिनिश लाइन से 94 किलोमीटर पहले पेश आए एक हादसे में कई साइकिलिस्ट गिर गए थे, जिनमें किम्बर्ली भी शामिल थी। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि ग्रीस की राजधानी एथेंस में एक पर्यटन लॉज में हुए गैस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। इनमें अमेरिकी मूल के 4 लोग और बर्तानी मूल का 1 व्यक्ति शामिल है। इस भीषण धमाके के चलते 3 मंजिली इमारत भी ढह गई। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। 6 बजे आप विस्तार के साथ सायंकालीन समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। तब तक अभी को दीजिए अनुमति। नमस्कार और आदाब।
4: Your news on MBC Play and MBC.mu.
5: You're listening to RM3 Radio.

नमस्ते आदाब। 4:11 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गजलें। अब थोड़ा वक्त है दिल के नाम, कभी मोहब्बत, कभी किसी की फिक्र, कभी हल्की सी उदासी और कभी

0: भी कोई मीठी सी याद। मैं हूँ आपके साथ पूनम, आइए इन्हीं एहसासों के साथ सजाते हैं आज की फिल्मी गजलों की महफिल सिर्फ आरम थ्री रेडियो मनोरंजन पर। इंजॉय कीजिए इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये है दिल का कारवां। यहाँ पर शुरू होती है वो गजलें, वो मोहब्बत की बातें, वो यादों का सिलसिला जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो कभी रुकता नहीं, जो हमेशा चलता रहता है, और उसी में ये फिल्मी गजलों का प्रोग्राम आपके लिए।
1: RM3 Radio.

0: 4:18 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। हम बात करेंगे आज उन शायरों की जिन्होंने लिखा तो बहुत कुछ, पर कहते हैं ना जिंदगी में लिखना ही सब कुछ नहीं होता, कभी उन चीज़ों का एहसास भी ज़िंदगी में होना चाहिए। एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, उनका नाम है शकील जमाली, बहुत ही प्यारा लिखते हैं। उनका नाम जो है बहुत ही कहते हैं कि जाना पहचाना है, बहुत सारे एहसास रखते हैं और ज़िंदगी में उनके एहसास बहुत कुछ जोड़ते हैं। कहते हैं एक ताना बाना सा है और एक धागे से दूसरे धागे को बहुत ही अच्छे से कहते हैं गांठ लगा देते हैं। लिखते हैं, तुमसे बिछड़े तो कोई शोर नहीं हुआ, तुमसे बिछड़े तो कोई शोर नहीं हुआ, बस दिल पहले जैसा फिर नहीं हुआ। लोग पूछते रहे सब ठीक है ना, लोग पूछते रहे सब ठीक है ना, हम हंसते रहे और कुछ कहा नहीं गया। कितना सुंदर लिखा है। कभी कभी उदासी दिखाई नहीं देती दोस्तों, इंसान हंस भी रहा होता है और कहीं ना कहीं दिल में रो भी रहा होता है, काम भी कर रहा होता है, घर के बाहर के दुनियादारी को निभा रहा होता है, बस दिल के अंदर किसी एक इंसान की जगह को खाली रखता है और वो जो खालीपन होता है कहते हैं धीरे धीरे वो खोखला हो जाता है, और जब वो खोखला होता है तो उसके अंदर कोई आवाज़ नहीं होती।
1: एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
2: एक सवाल हमेशा मेरे मन में टिक टिक टिक टिक करता है कि लोग मछली की तरह तैर कैसे लेते हैं। काश मैं भी तैर पाती।
3: तो अब तुम्हें तैरना भी नहीं आता? तुम्हें तैरना नहीं आता? अच्छा ठीक है, मैं जाके बिल दे के आता हूँ, तब तक तुम तैरना सीख लो। मुझे हर बार धोखा नहीं दे सकती।
1: सत्ताईस सितंबर रविवार को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म क्योंकि 2005 की मूवी सलमान खान और करीना कपूर पर फिल्माई गई क्योंकि।
4: RM3 Radio.

0: 4:27 हुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। इस समय साथ दे रही है पूनम आपके साथ। अगर आपको भी ये प्रोग्राम अच्छा लगता है या अच्छा लग रहा है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250620 पर, और हम देखेंगे कि किसने कितने कैसे मैसेजेस भेजे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ये मैसेजेस होते हैं उससे एहसास हो जाता है कि आप कितनी शिद्दत से उस प्रोग्राम या उस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आपका कोई मैसेज आएगा। चलिए बात करते हैं एक अलग शायरा की, तो उनका नाम है ममता किरण। बहुत ही प्यारी लिखती हैं गज़लों को। एक बहुत ही उनका रिश्तों में उनका अलग ही मन है। वो कहती हैं कि जो स्त्री मन होता है, जो एक औरत का मन होता है, उसके रंग बहुत होते हैं और उनका लेखन में वो दिखता भी है। लिखती हैं, मैंने पूछा नहीं कि दिन कैसा रहा। जैसे हस्बैंड्स आते हैं, पिता आते हैं, दोस्त आते हैं, भाई आते हैं, तो उसी पे लिखा उन्होंने, मैंने पूछा नहीं कि दिन कैसा रहा, बस चाय रख दी और पास बैठ गई। कभी फिक्र को शब्द कहाँ चाहिए, कभी फिक्र को शब्द कहाँ चाहिए, चेहरा देखा और बात समझ गई। ये सच है, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। आपने कई बार सोचा होगा, कई बार हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सदस्यों से पूछते नहीं हैं कि कैसा दिन रहा, बस सामने बैठ जाते हैं, कुछ सामने रखते हैं, खाना रखते हैं और एहसास हो जाता है उनके हाव भाव देख के और उनके एहसासात को देख के कि आज इनका दिन अच्छा गया या बुरा।
1: RM3 Radio.

0: दोस्तों 4:36 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं फिल्मी गजलों में उन शायर और शायरा की जहां पर उनकी मोहब्बत कुछ अलग ही तरीके से होती है। किसी की होती है कागज़ की, किसी से होती है कलम से, किसी की होती है दुनिया से, किसी की ज़िंदगी के साथ और किसी के अपनों के साथ में। ऐसे ही एक बहुत ही बड़े शायर हुए, उनका नाम है अज़हर इकबाल। अज़हर इकबाल जुड़ा एक ऐसा नाम है जो कि जाना पहचाना नाम है मुशायरों में। उनके कलाम में मोहब्बत और सामाजिक जीवन दोनों के रंग बहुत साफ साफ दिखते हैं। लिखते हैं, शाम ढली तो एक नाम याद आया, शाम ढली तो एक नाम याद आया, बिना दस्तक एक मेहमान याद आया, हमने सोचा था अब भूल चुके हैं उसे, हमने सोचा था अब भूल चुके हैं उसे, एक पुराना गीत चला सब याद आया। गानों के साथ भी ना हमारी कितनी यादें जुड़ी होती हैं। कभी शुरुआती धुन ही काफ़ी होती है एक पल को जीने के लिए, और बरसों बाद वो धुन जब चलती है एहसास हो जाते हैं, वो दिन याद आ जाते हैं और पलट के पूछ लेते हैं, क्या हम अभी भी तुम्हारे साथ हैं।
1: RM3 Radio.

0: धुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम फिल्मी गजलों के साथ। एक बहुत प्यारे शायर हुए हैं, उनका नाम है अभिषेक शुक्ल। हिंदी उर्दू गजल लिखते हैं वो और बहुत बड़े कवि हैं। उनकी रचनाओं में आधुनिक जो आज की दुनिया है और प्रेम, बहुत कहते हैं ना सामान्य और सीधे सपाट बातों में सिर्फ ये कहते हैं कि एहसास है। लिखते हैं, मिले तो वक्त बहुत कम था हमारे पास, मिले तो वक्त बहुत कम था हमारे पास, फिर भी वो शाम बहुत देर साथ रही। तुम चले गए अपने रास्ते की तरफ, तुम्हारी हंसी मेरे कमरे में रात भर रही। कुछ मुलाकातें घड़ी देखकर नहीं मापी जाती, 10 मिनट की मुलाकात भी कभी कभी इतनी प्यारी होती है कि एहसास पूरा दिन साथ रहता है, और कभी कभी वो एहसास सालों साल साथ चलते हैं। कई बार इंसान दुनिया से चला जाता है, कई बार इस दुनिया के उस ऐस कोने में चला जाता है जहाँ किसी को पता भी नहीं कि वो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो जो एहसास, वो यादें जो बनी होती है वो हमेशा साथ रहती हैं।
1: RM3 Radio.

4:52 हुए हैं दोस्तों, आज कहीं प्यार मिला, कहीं परवाह और कहीं अधूरी बात, तो कहीं पुरानी याद अचानक लौट आई। यही तो गजलों की खूबसूरती होती है, कभी हमें किसी की याद दिलाती है और कभी

हमारे अपने दिल की बात कह जाती है। मैं थी आपके साथ पूनम, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा और किसी अपने की अगर याद आए तो उससे बात ज़रूर कीजिएगा। मेरी तरफ से नमस्ते आदाब, सुनते रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन। और मेरे बाद आपको साथ मिलेगा शीतल जी का, उनका साथ ज़रूर दीजिएगा। और मुझसे पहले थे हमारे बहुत ही प्यारे प्रताप जी, जो कि बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के साथ आते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं शीतल जी का स्वागत करना चाहूँगी, मैं यही कहूँगी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और जिनके घरों में बच्चे हैं, जिनके कल से कॉलेज के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, स्कूल के एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस हमारी पूरी RM3 मनोरंजन की टीम की तरफ से। अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। मेरी तरफ से बाय बाय। RM3 रेडियो।

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं।
1: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है, एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है, पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें।
5: अजीबोगरीब दास्तां उस महान कलाकार की, जिन्होंने अपने पहले कदम खिलौनों के बदले हिंदी सिनेमा के मंच पर रखे और वहीं से उन्होंने खेलना सीखा। वन ऑफ द मोस्ट बिलवड आइकॉनिक हैंडसम एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। मिलते हैं ऋषि कपूर से।

ऋषि कपूर हिंदी सिनेमा के एक अनोखे यूनिक कलाकार रहे। महज 3 साल के थे जब फिल्में पर्दे पर नजर आए। इस 3 साल के बच्चे ने अनजाने में एक ऐसे मंच पर कदम रख लिया जो कि बन गया उसकी जिंदगी की सबसे अहम हिस्सा। मैं न रहूंगी, तुम न रहोगे, फिर भी रहेगी निशानियां। ऋषि कपूर वो रहे जो कि बड़े गर्व के साथ कपूर खानदान के इस लिगेसी को लेकर 3 साल के बच्चे ने इस लिगेसी को आगे बढ़ाते हुए बड़े सफलता से अपने जिंदगी को हिंदी सिनेमा के नाम कर दिया। पहली बार के लिए ऋषि कपूर नजर आए फिल्म श्री चार्ल्स में, जो कि आई थी 1955 में। सन 1955 में नरगिस राज कपूर इस फिल्म के लीड कलाकार रहे। आइकॉनिक गाना प्यार हुआ इकरार हुआ।

सन 1970 में इंडियन एपिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में ऋषि कपूर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए और ऋषि कपूर ने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से निभाया जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के अवार्ड से नवाजा गया।

0: अच्छा, इतने ढेर सारे तीतर, कितने हैं भला?
1: आठ।
0: आहा, गौर से देखो और सोच के बोलो।

अनजाने नहीं सही, लेकिन ऋषि कपूर हिंदी सिनेमा से कुछ इस तरह से जुड़ गया जो कि बन गया उसकी जिंदगी का सफर। डेब्यू आज लीड एक्टर ऋषि कपूर नजर आए म्यूजिक रोमांटिक मूवी फिल्म बॉबी में। डेब्यू एक्ट्रेस रही डिंपल कपाडिया। हिंदी सिनेमा को इस नई कहानी ने एक नया आयाम दिया, हिंदी सिनेमा को कुछ हद तक बदल के रख दिया। द ब्यूटी ऑफ बॉबी पहली बार के लिए टीनेज रोमांस को इतनी खूबसूरती से पेश किया गया इस फिल्म में। फिल्म के कहानी के साथ साथ गीत और संगीत ने भी लोगों को बहुत प्रेरित किया। इस फिल्म के सभी गाने बेहद ही मशहूर हुए, लेकिन एक गाना रहा जो कि आज भी हम याद कर लेते हैं, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। लता जी और शैलेंद्र ने इस गाने को प्लेबैक दिया। आनंद बख्शी ने गाने को लिखा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गाने को खूबसूरत संगीत से सजाया। फिल्म बॉबी डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट फिल्म मेकर द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब।

में नजर आने लगी। उनकी खूबसूरती के साथ साथ उनका किरदार काबिले तारीफ रही। 1974 में फिल्म आई थी जहरीला इंसान। एक गाना किशोर कुमार की आवाज में, आदि बर्मन के संगीत निर्देशन में, फीचरिंग ऋषि कपूर, मुश्मी, नीतू सिंह, जहरीला इंसान, ओ हंसिनी।

ऋषि कपूर अपने फिल्मी करियर के दौरान अनगिनत कलाकारों के साथ काम किए। नीतू सिंह ने भी ऋषि कपूर के साथ अनगिनत फिल्मों में नजर आई। एक ब्लैक कॉमेडी एक्शन थ्रिलर फिल्म खेल खेल में, जो कि आई थी 1975 में, ऋषि कपूर के किरदार इस फिल्म में काबिले तारीफ रही, कमाल कर दिखाया। संगीतकार रहे आर डी बर्मन साहब नीतू सिंह के ऑपोजिट ऋषि कपूर फिल्म खेल खेल में।

1976 की फिल्म लैला मजनू रोमांटिक ड्रामा मूवी रही ऋषि कपूर अपोजिट रंजीता कौर। ऋषि कपूर के इस फिल्म में किरदार काबिले तारीफ रही। शायद ही कोई और कलाकार ऋषि कपूर की तरह इस फिल्म में किरदार निभा पाएंगे। मजनू का किरदार कितनी खासियत से उन्होंने निभाया जिसके लिए आज भी उन्हें हम याद करते हैं। फिल्म लैला मजनू की कहानी के साथ साथ गाने एकदम इमोशनल और रोमांटिक रहे। मदन मोहन और जयदेव ने म्यूजिक कंपोजिशन इस फिल्म में दिए। साहिर लुधियानवी ने हर एक अल्फाज को बड़ी खासियत से पेश किया। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज गूंजे फिल्म लैला मजनू में। अब अगर हम...

ऋषि कपूर एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर रहे। हर एक किरदार को ऋषि कपूर बड़ी खासियत से पेश करते जाते थे, चाहे वो इमोशनल, चाहे वो कॉमेडी फिल्म हो, चाहे किसी भी कलाकार के साथ उन्होंने काम किया, अपने आप को पूरी तरह से हर फिल्म में स्थापित करते गए। महान कलाकार अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, इन दोनों कलाकारों के साथ ऋषि कपूर नजर आए फिल्म अमर अकबर एंथनी में, जो की आई थी 1977 में। एक गाना ऋषि कपूर पर फिल्माया गया था, पर्दा है पर्दा। मोहम्मद रफी की आवाज गूंजी ऋषि कपूर के लिए।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

हालांकि ऋषि कपूर 1955 में 1955 में पहली बार के लिए बड़े पर्दे पर नजर आए, लेकिन पूरी तरह से हिंदी सिनेमा से जुड़ गए 70 के दौर में। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। फिल्म आई थी 1977 में, डायरेक्टर बन नसीर हुसैन, द ग्रेट म्यूजिक कंपोजिशन ऑफ ऑडी बर्मन, अल्फाज मजरू सुल्तानपुरी के रहे। ऋषि कपूर ऑन स्टेज, पचना ए हसीनो, लो मैं आ गया।

रविवार 27 सितंबर 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ट्रॉपिकल इलाके में तैयार हो रहा एक ध्रुवीय जहाज कैप्टन ऑटिक इन दिनों पोटली में अंतिम रूप ले रहा है। हिंद महासागर के शिपयार्ड में बन रहा ये नई पीढ़ी का अन्वेषण पोत ऑटिक क्षेत्र में कम से कम प्रदूषण के साथ यात्रा के लिए तैयार किया गया है। एमएमएम ने आज रिजवी में अपनी स्थापना के 57 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। अंतरिम प्रधानमंत्री और पार्टी के उपनेता आर्यन नवमारी सहित पार्टी के नेताओं ने समर्थकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र जैसे मूल मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ओजेम्पिक वेगोवी और मुंजारो जैसे इंजेक्शंस का इस्तेमाल वजन घटाने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ये दवाएं मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए दी जाती हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टरों की सलाह और कड़ी चिकित्सकीय निगरानी में किया जाना चाहिए। और विदेश में उत्तर पूर्वी अमेरिका में शक्तिशाली तूफान से तटीय बाढ़, बिजली कटौती और यात्रा में भारी बाधा आई है। खराब मौसम के कारण स्टेडियम के कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं। नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ और समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ट्रॉपिकल इलाके में तैयार किया जा रहा एक ध्रुवीय जहाज, यह लगभग असंभव लगने वाली परियोजना इस समय पोटली में आकार ले रही है। हिंद महासागर के शिपयार्ड में कैप्टन ऑटिक को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये नई पीढ़ी का एक अन्वेषण पोत है जिसे ऑटिक क्षेत्र में कम से कम प्रदूषण के साथ यात्रा करने के लिए तैयार किया गया है। आइए शहजाद अली जुमन

0: के साथ जाने इस विशाल समुद्री पोर्ट की कहानी जो मॉरिशस में निर्मित हो रहा है। विवरण गीता सुनारायण के साथ।
1: पिछले 25 साल से पोर्टरिस में स्थित शौचे नबाल डे लुसियां एजें दुनिया भर के ग्राहकों के लिए जहाज बना रहा है। इसमें खास तौर पर रक्षा, औद्योगिक मछली पकड़ने और ऑफशोर परिवहन के क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ इससे पहले कभी ऐसा जहाज नहीं बनाया गया था। कैप्टन ऑक्टिक दुनिया के सबसे आधुनिक खोजी जहाजों में से एक है, जिसे लगभग बिना प्रदूषण के समुद्र में चलने के लिए तैयार किया गया है। शौचे नवाल डे लुसियां एजें लिमिटेड के उप महानिदेशक निकोला पेरिये कहते हैं,
2: C'est un bateau révolutionnaire où nous sommes très très fiers de le faire parce que ça représente pour nous 450 000 heures de travail.
1: ये एक आधुनिक जहाज है, इसे बनाकर हमें गर्व है। दुबई से इसके ढांचे आए हैं। नवंबर में ये यहां आया, अक्टूबर के अंत तक या नवंबर में डिलीवरी करेंगे।
2: Et donc elle est arrivée au mois de novembre mais on le livre normalement vers la fin octobre entre la fin octobre et début novembre dépendant des essais.
1: इसका राज है 5 विशाल कठोर सोलर सेल्स जो फिलहाल नीचे रखे गए हैं। इन्हें खड़ा किए जाने के बाद हवा और सूरज की ऊर्जा इसके इंजन्स को चलाएगी। डेविड टोमासो कहते
3: हैं,
1: दुनिया में पहली बार इस तरह का जहाज बनाया गया है। ये इकोलॉजिकल है, इसमें सोलर पैनल्स हैं, लकड़ी और कार्डबोर्ड से इसमें गर्मी पैदा होती है। निकोला पेरिये कहते हैं, कार्यों का संचालन एक मुख्य चुनौती थी। मॉरिशियन कामगारों और विशेषज्ञों के साथ इस परियोजना को विश्वास के साथ पूरा किया। इस फ्रांसीसी जहाज का ऑर्डर सेलर नाम की शिपिंग कंपनी ने दिया है। अब तक 40 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी कर चुके सीएनओई को अपनी अच्छी प्रतिष्ठा और काम के अनुभव की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है। निकोला पेरिये कहते हैं, ये एक आधुनिक जहाज है, दुनिया में इस तरह का ये पहला जहाज है। मॉरिशन विशेषज्ञता मजबूत है, बड़ा कार्यदल है जो सबसे बड़ा निवेश है।
2: एलिवेटर असोंग मोबिल की ले प्लू पुसेंट ऑ मोंड की पे लेवे 1500 टन de charge utile, mais le plus gros investissement est humain. Vous allez voir en faisant le tour du bateau à quel point le savoir-faire mauricien est fort et grand.
1: कैप्टन ऑक्टिक की लंबाई 70 मीटर है और इसमें 36 यात्री तथा 24 क्रू सदस्य सवार हो सकते हैं। तकनीक का ये शानदार नमूना यात्रियों को उत्तरी ध्रुव क्षेत्र तक ले जाने के लिए बनाए गए इस जहाज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि समुद्र में इसके उत्सर्जन को न्यूनतम रखा जा सके। एक ऐसी उपलब्धि जिस पर इसे तैयार करने वाले कामगारों को गर्व है। मॉरिशस के कामगारों के हाथों तैयार हो रहा है। जोनाथन सामची को कहते हैं, शुरू में जटिल था पर बाद में सभी कामगारों ने मेहनत की ताकि इसे पूरा किया जा सके। जॉन एरिक देसेरे कहते हैं, कम अवधि में सभी लोगों ने मिलकर इसे पूरा किया। हमारी भूमिका ये आश्वस्त करना है कि कोई दुर्घटना न हो। कैप्टन ऑक्टिक की डिलीवरी इसी साल होनी है। जल्द ही मॉरिशस में जन्मा ये जहाज ऑक्टिक की बर्फीली दुनिया की ओर अपना सफर शुरू करेगा।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन यानी कि एमएमएम ने आज रेज्यूमे अपने 57 वर्षों के अस्तित्व का जश्न मनाया। दल के नेताओं जिनमें अंतरिम प्रधानमंत्री और पार्टी के उपनेता आरियान नवामारी भी शामिल थे, उन्होंने उपस्थित समर्थकों को संबोधित किया। नेताओं ने कहा कि एमएमएम आज भी अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, जिनमें राष्ट्रीय एकता, योग्यता के आधार पर अवसर और लोकतंत्र के प्रति सम्मान शामिल है। सिल्वाना पारिमामन की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
1: एमएमएम के पहले कार्यकर्ता हो या फिर पार्टी की अगली पीढ़ी, जोश और उत्साह के साथ साथ संस्थापक सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मूवमेंट मिलिटेंट मॉरिशियन यानी एमएमएम के 57वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के इतिहास को याद किया गया। एमएमएम के अध्यक्ष गिजा उद्दीम ने पार्टी के सफर पर प्रकाश डाला।
4: Manifestation contre la venue de princesse Alexandra, la police y arrête un certain nombre de dirigeants de clubs des étudiants militants. Par la suite,

0: nous avons créé le MMM, couleur mauve, symbole l'équerre. Tel parti dans Maurice qui fin gagne 3 élections générales, 60-0. Nous sommes le parti dans Maurice qui, depuis l'indépendance, depuis qu'il nous a créé, depuis 69, toute élection qui finit, il y en a au moins une dizaine de vannes MMM qui délire.
1: एमएनएम की युवा शाखा के अध्यक्ष दृश बाबूलाल ने पार्टी के भविष्य पर बात की।
2: Nous visons être plus vivants parce qu'il y a un mouvement politique. Les partis vivent avec son passé, les vivent avec son capacité pour préparer l'avenir. Façon qui va nous engager l'information fait changer, façon qui se communique fait changer, et politique aussi visant qu'on évolue.
1: एमएमएम के महासचिव राजेश भगवान का कहना है कि पार्टी आज एक अहम मोड़ पर खड़ी है।
3: Parce que je mérite sa considération-là. Nous, le président du gouvernement, pour l'éviter, pour travailler et pour terminer ce programme-là.
1: पार्टी की उपनेता आर्यन नाबामारी ने एमएमएम के मूल्यों को अपने भाषण में प्रमुखता दी।
4: L'unité nationale n'est pas une option. Il y a une responsabilité. Il y a un devoir. Nous envions l'île Maurice que nous pouvons continuer et dans la justice sociale. Le respect de la démocratie et de l'institution. Un l'île Maurice, que pour une l'égalité hommes-femmes. Pour le MMM, ça va nous aller là, il n'y a pas une option. Il y a un devoir.
1: सभी वक्ताओं के अनुसार सितंबर 1969 में युवा आदर्शवादियों द्वारा बनाई गई एमएमएम ने अपने सफर में कई बड़े दौर देखे हैं, कुछ गौरवपूर्ण तो कुछ मुश्किल भरे। उनका कहना है कि एमएमएम आज भी अपने मूल्य सिद्धांतों पर कायम है। इस तरह पार्टी की 57वीं वर्षगांठ कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और उनके विश्वास का जश्न मनाया गया।
5: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम शनिवार 26 सितंबर की शाम को लंदन के लिए देश से रवाना हो गए। वे यूनाइटेड किंगडम की अपनी इस यात्रा के दौरान शागस मामले पर उच्चतम स्तर पर चर्चा जारी रखेंगे, विशेष रूप से मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित नवीनतम विकास पर बातचीत करेंगे। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शागस मामले पर मुख्य वार्ताकार जोनाथन पावल के साथ उनकी बैठकें होंगी। उन्हें द्वीप समूह पर मॉरिशस के साथ बातचीत के लिए ब्रिटिश सरकार के विशेष दूत भी नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आर्यन नाबामारी अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगी। दुनिया में मीठे पानी के भंडार लगातार कम होती जा रही है और वर्ष 2025 पिछले 3 दशकों से अधिक समय में सबसे सूखे वर्षों में से एक रहा। यह निष्कर्ष विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 17 सितंबर 2026 को प्रकाशित दुनिया के जल संसाधनों की स्थिति पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में सामने आया है। मॉरिशस भी इससे अछूता नहीं है। इसका उदाहरण हमारा मुख्य जलाशय मोगवाक्वा है, जिसमें पानी का स्तर नवंबर 2026 के अंत तक घटकर 20% के गंभीर स्तर तक पहुंच सकता है। वह 32 वर्ष की थी, वह गन्ने के खेतों में काम करती थी और अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। 27 सितंबर 1943 को बेल्वी आगल में हड़ताल कर रहे श्रमिकों के एक जुटाव के दौरान अंजलि कुपेन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका नाम श्रमिक आंदोलन के इतिहास और श्रमिकों के अधिकारों की लड़ाई से हमेशा जुड़ा रहेगा। उनकी मृत्यु के 83 वर्ष बाद मॉरिशस तमिल टेम्पल्स फेडरेशन ने पोर्टली में उनके स्मारक

0: के सामने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृति को जीवित रखने का संकल्प दोहराया। सांताना पोस्नो की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
1: मॉरिशस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण हस्ती बनने से पहले अंजालि कुपेन गन्ने के खेतों में काम करने वाली एक आम महिला थी। 1911 में रिविये जोहोपा में जन्मी सुंदरम पावतन बाद में बेल्वियागल में बस गई, जहां उन्होंने खेतों में मजदूर के तौर पर काम किया। सितंबर 1943 में बेहतर वेतन और बेहतर कार्य शर्तें जैसी कई मांगों के साथ शक्कर कारखाने के मजदूर हड़ताल पर गए। 27 सितंबर को प्रतिष्ठान के मजदूर एक धार्मिक अनुष्ठान के लिए इकट्ठा हुए। तनाव बढ़ा, पुलिस ने हस्तक्षेप किया और गोलियां चली। मात्र 32 साल की अपने प्रथम बच्चे के लिए गर्भवती अंजालि कुपेन की गोली लगने से मौत हो गई। घटनास्थल पर ही और दो लोगों ने जान गंवाई और कुछ दिनों के बाद घायल हुए एक चौथे मजदूर की भी मौत हो गई। इस वारदात ने देश पर गहरा असर किया। जूनियर मिनिस्टर राजन नौसिंगन कहते हैं, ये महान महिला मॉरिशस की हैं और पूरे मॉरिशस को, विशेष रूप से तमिल समुदाय को उन पर गर्व होना चाहिए। अंजालि कुपेन धीरे धीरे मजदूरों के संघर्ष और उस दौर के सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी का प्रतीक बन गई। उनकी कहानी पीढ़ियों तक याद रखी गई और आज तक कई जगहों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। 27 सितंबर 1943 को जान गंवाने वाली इस महिला की याद में पोर्टलुई में एक स्मारक बना है। मॉरिशस तमिल टेम्पल्स फेडरेशन के अध्यक्ष दौसेन गंगादू कहते हैं, अंजालि कुपेन मजबूती का प्रतीक है। उनके संघर्ष पर कई लेख लिखे गए हैं। मैं नौजवानों से उन्हें पढ़ने की मांग करता हूं ताकि वे सही मायने में एक कामगार की लड़ाई को जान सकें। वे मात्र एक तमिल महिला नहीं बल्कि प्रथम मॉरिशन स्त्री थी जिन्होंने मॉरिशन श्रमिकों के लिए संघर्ष किया था ताकि उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो। ये दिन उस महान महिला के साथ साथ उन सभी अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देने का मौका है जिन्होंने बेहतर कार्य शर्तों और उचित सम्मान के संघर्ष में अपनी जान बाजी पर लगाई थी।
0: कई भाषाओं में प्रार्थनाएं, दूर दराज से आए गीत और कई महाद्वीपों के रंगों में रंगी एक चर्च पाम्पलमुसेस के सेंट फ्रांसवा दासीज़ा में मॉरिशस के लोग और इस द्वीप पर रहने तथा काम करने वाले विदेशी इस रविवार को मोंसेनियर जॉन मिकाएल जुरन के साथ एकत्र हुए। ये उत्सव 112वें विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था, जिसे इस वर्ष प्रवासी और शरणार्थी बच्चों के नाम समर्पित किया गया है। साखा ओनू की रिपोर्ट पर अदिति अवतार का विवरण।
1: अलग अलग शब्द लेकिन प्रार्थना एक ही। इस रविवार पोम्पलुसेस के सेंट फ्रांसवा दासीज गिरजाघर में भिन्न प्रकार की जिंदगी जीने वाले लोगों ने अपनी अपनी भाषाओं में प्रार्थनाएं की। मलागासी, कमेरूनी, नाइजीरियाई, भारतीय, ये लोग आज मॉरिशस में रहते हैं और काम करते हैं। इस प्रार्थना सभा में हर एक अपने देश का एक हिस्सा

0: मलगासी कामगर कहती हैं, मैं वाकवा में रहती हूं, वहां सभी परिवार की तरह रहते हैं। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, इसके साथ ही व्यापारी भी अच्छे हैं।
1: Vraiment sympa. Même tous les marchands de chez nous, ils sont vraiment adorables.
0: केरला मूल के नागरिक कहते हैं, मॉरिशन लोग अच्छे हैं, वे हमेशा हमारी मदद करते हैं, हम यहाँ सभी के साथ मिलकर रहते हैं। नाइजीरियाई मूल के नागरिक कहते हैं, मेरा यहाँ अच्छा स्वागत हुआ है, लोग भले हैं, लेकिन हमें कभी कभी अपने देश की याद आती है, खासकर वहाँ के लोग और खान पान। इस सभा ने उन सभी की पहचान उजागर की। ये पहल एक बहुभाषी टीम की रही। प्रार्थनाओं के दौरान अलग अलग भाषाओं में पाठ, भजन और प्रार्थनाएं हुई। बच्चे भी इसमें शामिल हुए। ये मौका रहा अपनी मातृभाषा में प्रार्थनाएं करने का। इन आवाजों ने उस विषय को दोहराया जिसे पोपलियो 14 ने प्रवासियों और शरणार्थियों के 112वें विश्व दिवस के लिए चुना है, यानी इनमें से एक बच्चा भी। ये आंकड़े से आगे देखने और उन नाबालिगों के चेहरों और कहानियों पर ध्यान देने का आह्वान है जिन्हें अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, कभी युद्ध, कभी गरीबी तो कभी हिंसा के कारण।

0: मॉरिशस के बिशप जॉन मिकाएल जॉन ने कहा, जब बड़े एक जगह छोड़ते हैं तो अक्सर बच्चों को भी साथ जाना पड़ता है। कभी कभी यहाँ जब उन बच्चों की दस्तावेजें नियमित नहीं होती तो वे स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन कानून कहता है कि अगर किसी अभिभावक के पास जरूरी दस्तावेज न भी हो तो उसके बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है। आप्रवासी भी इंसान होते हैं, हम भी अलग अलग जगहों से आए हैं तो हम भी एक तरह से आप्रवासी हैं। इसके अलावा कई मॉरिशन परिवार के सदस्य भी विदेश में बसने जाते हैं। मॉरिशस में भी आप्रवास कई रूपों में मौजूद हैं। विदेशी कामगारों के सफर के पीछे एक कहानी, एक संस्कृति और कभी कभी हजारों किलोमीटर दूर पीछे छूटा हुआ परिवार होता है। पोम्पलेमोसिस में लगी इस प्रार्थना के अंतर्गत सरहदें कुछ हद तक धुंधली हुई।
1: ओजेम्पिक, विगोवी या फिर मुंजारो, सितारे और अन्य इन्फ्लुएंसर्स इन इंजेक्शन के वजन घटाने वाले गुणों का बखान करते हैं, जिन्हें आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए निर्धारित किया जाता है। वे इन दवाओं का इस्तेमाल भूखे दबाने वाली दवा के रूप में करते हैं, जिनके जिसके दिखाई देने योग्य परिणाम भी मिलते हैं। केवल डॉक्टरों के प्रेस्क्रिप्शन पर मिलने वाली इन दवाओं का इस्तेमाल सख्त मेडिकल निगरानी में किया जाना चाहिए। सिंचा मुटु की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
2: मॉरिशस में हाल ही में उपलब्ध हुई दवा ओजेम्पिक में मुख्य रूप से GLP-1 नाम का एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और ब्लड शुगर तथा भूख को नियंत्रित करने में मदद देता है। ओजेम्पिक में इसे अधिक मात्रा में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। मेडाक्टिव की फार्मासिस्ट हेमानंद कुसिरतन कहती हैं, ओजेम्पिक एक इंजेक्शन है जो खासकर टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को दिया जाता है। ये खून में शक्कर की मात्रा नियंत्रित रखने के लिए दिया जाता है। सप्ताह में एक बार प्रेस्क्रिप्शन पर ही मिलता है और मेडिकल फॉलोअप भी करना पड़ता है। इसका इस्तेमाल मोटापे के इलाज के लिए भी किया जाता है, जिसमें शरीर के वजन में 16% तक कमी आने की संभावना होती है। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, इसका असर सिर्फ वजन पर ही नहीं पड़ता, दिल के लिए भी ये अच्छा है, खासकर जिन्हें दिल की परेशानियां होती हैं। ये किडनी के लिए भी अच्छा है। किस मरीज को और कैसे ये देना चाहिए ये जानना जरूरी है। दुनिया भर में इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल सौंदर्य और शरीर का वजन कम करने के लिए भी किया जा रहा है और किसी भी दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर निशांत नंदलाल कहते हैं, साइड इफेक्ट्स में खासकर पाचन की समस्या हो सकती है, कुछ मरीज मसल्स खो देते हैं, इस तरह उनका मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। दुनिया के कई हिस्सों में दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के मामले भी सामने आए हैं। ये दवाई का असर नहीं बल्कि तेजी से वजन घटने का असर है। अगर डायबिटीज या दृष्टि पर नियंत्रण नहीं रखी गई, ध्यान नहीं दिया गया और जब इस दवाई का प्रेस्क्रिप्शन देते हैं तो ये खतरा पैदा होता है। इलाज बंद करने के बाद दोबारा वजन बढ़ने की संभावना भी रहती है और कम किए गए वजन का 60% तक वापस बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में इलाज कराना बहुत ही जरूरी है।
1: पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र अवधि है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों यानी पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार यह आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इस साल 27 सितंबर को पितृपक्ष शुरू हो रहा है जो 10 अक्टूबर को समाप्त होगा। विधिमा सिबरन की रिपोर्ट।
3: पितृपक्ष यानी वो समय जब हम अपने उन लोगों को याद करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंड दान करते हैं। आम भाषा में इसे 16 श्राद्ध कहा जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक इस परंपरा को माना जाता है। मान्यता है कि हमारे सारे पूर्वज, हमारे सारे पितृ अपने परिवार के साथ पृथ्वी में वापस आते हैं और उनके लिए किए गए तर्पण

0: और श्राद्ध को वे स्वीकार करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार मनुष्य पर तीन प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं और परिजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।
1: जो लोग बड़े बुजुर्गों का वंदन पूजन पाठन करते हैं उनकी चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये चारों के चारों चीजें बढ़ाने के लिए पितृपक्ष हमारे सामने का हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने दिया है। हम इसमें पितरों का पूजन करते हैं, उसमें कोई बहुत विशेष सामग्री नहीं है, बस आटे का, जौ के आटे का या चावल का पिंड बना करके पिंड को रख करते हैं, उसमें पितरों को बुलाते हैं, जो कुछ हमसे भोजन बनता है भोजन सामने रखा, पितरों को प्रणाम किया, पितर आए, उन्होंने भोजन इत्यादि ग्रहण किया और आशीर्वाद दे करके वो चले जाते हैं। जहाँ पितरों का आशीर्वाद होता है वो घर फलता फूलता है, उस घर में समस्याएँ नहीं होती हैं। जहाँ पितरों का प्रकोप होता है, जहाँ पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, उस घर में सुख शांति नहीं रहती है, वहाँ विकास रुक जाता है, कभी कभी तो वंश की वृद्धि भी रुक जाती है, वंश आगे नहीं बढ़ पाता है पितर के श्राप से। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका होता है कि हमारे लिए 15 दिन का समय है कि हम 15 दिनों में पितरों का पूजन करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।
0: 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है, जिसके बाद किए जाने वाले पितरों, श्राद्ध और पिंडदान विस्तार से बताया गया है। इन दिनों में दान पुण्य, ब्राह्मण भोजन और गरीबों की मदद करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन 16 दिनों में नए कपड़े, आभूषण या संपत्ति खरीदना और किसी भी तरह के मांगलिक या शुभ कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश नहीं किए जाते हैं। पितृपक्ष केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने बुजुर्गों और पूर्वजों के प्रति प्रेम, निष्ठा और श्रद्धा प्रकट करने का एक सुंदर तरीका है।
2: शिमगिरी में बाजार की अब एक नई जगह है, एक बिल्कुल नया भवन जो दक्षिण के इस हिस्से के व्यापारियों और उपभोक्ताओं को रोज स्वागत करता है। सब्जियां, फूल, कपड़े, खाद्य उत्पाद, ये मंडी यहाँ काम करने वाले लोगों को अधिक जगह और सबसे बढ़कर बेहतरीन स्थिति प्रदान करना चाहता है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी अमेरिका में करोड़ों लोग एक शक्तिशाली तूफान की चपेट में हैं, जिसके कारण तटीय इलाकों में बाढ़, बिजली कटौती, यात्रा में भारी बाधा और स्टेडियम के कार्यक्रम रद्द करने पड़े हैं। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने वाला है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात के दौरान बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी, कल सुबह पूर्वीय ढलानों और ऊंचे इलाके पर बादल घेराएंगे और वर्षा होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर दक्षिणी पश्चिमी लगूनों के उस पार। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच, तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 6:07 पर, जबकि कल सूर्योदय 5:54 पर।

देश विदेश की नई खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।

0: अशोक समाचार सुनते हैं। Chemin de Verga, Glenpark Vaquame, Chemin de Verga, Glenpark Vaquame, 77 साल की, 77 years old की, श्री बाला सुब्रमण्यन पाटी, श्री बाला सुब्रमण्यन पाटी, जिन्हें सब लोग किसना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, कल दिन के 10 बजे उनकी पत्नी श्रीमती जेंसी पाटी के घर Chemin de Verga, Glenpark Vaqua से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए Solferino Vaqua की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। Cremation tomorrow at 10 a.m. Natua Road, Triangle Goodlands में, Natua Road, Triangle Goodlands में 67 साल की, 67 years old की श्रीमती स्वस्ति पुरेश, श्रीमती स्वस्ति पुरेश, पैदाइशी नाम पुनाई, और जिन्हें सब लोग स्वस्ति मदन कोंगो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12 बजे, कल दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री मनेश्वर पुरेश के घर नातवा रोड ट्रायंगल गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट नून। क्लियाफोन नंबर दो वाकुआ में, क्लियाफोन नंबर दो वाकुआ में 65 साल की, 65 years old की श्री श्याम गजादव, श्री श्याम गजादव जिन्हें सब लोग रोशन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे, कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे उन्हीं के घर क्लियाफोन नंबर दो वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। रॉयल रोड मोफेचिल में, रॉयल रोड मोफेचिल में जो स्नो व्हाइट सुपर मार्केट के पास है, 73 साल की, 73 ईयर्स ओल्ड की श्री जन्मजय मुतुजी, श्री जन्मजय मुतुजी जिन्हें सब लोग गौसों के नाम से भी, गासों के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे, कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री गजन मुतुजी के घर रॉयल रोड मोफेचिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलिया की श्मशान भूमि ले जाए जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 11 a.m. सुभाची रोड बुनाकोय में, सुभाची रोड बुनाकोय में 56 साल के, 56 years old के श्री रविन जमना, श्री रविन जमना जिन्हें सब लोग मुनू के नाम से भी जानते थे, और जो एनटीसी के पूर्व चालक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे, कल दिन के 12:30 बजे उनकी पत्नी श्रीमती दीपा किसुंदया जमना के घर सुभाची रोड भुनाकोय से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोंचे की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास्ट नून। और महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले में, महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले में 84 साल की, 84 years old की श्रीमती लीलावती गुलजार, श्रीमती लीलावती गुलजार पैदाइशी नाम काउल और जिन्हें सब लोग मामा सुदेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2:30 बजे, कल दिन के 2:30 बजे उन्हीं के घर महात्मा गांधी रोड थ्वाबुचिक थ्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कैमिनिस थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट हाफ पास्ट 2 p.m. इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Radio 24 hours a day.

सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। सीबी रोजहिल के इन इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित करती है। एवेन्यू मद्रास, एवेन्यू रासितातान का एक भाग, एवेन्यू क्रेटिन,

Avenue Sirius, NHDC Site and Services, और आसपास के इलाकों को के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि कल सोमवार 28 सितंबर 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर दिन के 2 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सेबी इन सभी ग्राहकों को ये भी सूचित करती हैं कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सेबी इन असुविधाओं के लिए अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी एक विज्ञप्ति सेबी की ओर से।

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: नहीं सो। 6:35 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ, RM3 रेडियो के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में, नई सोच प्रोग्राम में, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, जी हाँ, 7 बजे तक। और ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम 9 बजे तक आप सुन पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सोच वही जो हमें आगे बढ़ने का हौसला दे, जो पुरानी बंदिशों से निकलकर एक बेहतर कल की तरफ ले जाए। और हर नई सोच एक नई बदलाव की शुरुआत होती है। तो चलिए, खूबसूरत गाने आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है, अपने विचारों को एक नई दिशा देते हैं और शुरू करते हैं आज का नई सोच।

0: RM3 Radio.
1: नहीं सो। जी दोस्तों, जिंदगी भी एक सुरीला गीत है। कभी हंसना है, कभी रोना है, कभी खुशी और कभी गम। इन्हीं रंगों से जिंदगी खूबसूरत बनती है। और जब दिल पर बोझ हो तो गाना और बजाना अक्सर मन को हल्का कर देते हैं। संगीत वो साथी है दोस्तों जो बिना कुछ कहे दिल की बात समझ लेता है। तो चलिए अगला गाना सुनते हैं और जिंदगी के इन्हीं खट्टे मीठे पलों के साथ आप लोगों के लिए ये गाना किशोर दा और SP बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में।

दोस्तों, कभी हंसी, कभी आंसू, कभी गीत और कभी खामोशी, ये तो जिंदगी के खूबसूरत रंग है। उम्मीद है आज के गीतों और बातों ने आपके दिल को थोड़ा सुकून और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दी होगी। इसी मुस्कान को संभल कर रखिए, खुश रहिए और संगीत के साथ जुड़े रहिए। 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन पाएंगे।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
4: सात बज चुके हैं, एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिलों की आवाज प्रोग्राम में और आप लोग जुड़े हुए हैं आरएम फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन के साथ। मैं उषा कौर यहाँ पर, जी हाँ, साथ निभाऊंगी 9 बजे तक, आप भी साथ निभाइएगा। नंबर है 4028070402807 और मैसेजेस आप भेज सकते हैं ऑन 5250620 और ये जो प्रोग्राम है, हमें पता है कि आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आज रविवार 27 सितंबर 2026, जहाँ कुछ बातें अल्फाज नहीं एहसास कहते हैं और कुछ जज्बात गीतों के ज़रिए दिल तक पहुँचते हैं, तो चलिए आज सुनते हैं दिल की वो आवाज़ जो शायद आपके दिल की बात भी कहे। तो चलिए आज का पहला गाना सुनते हैं, बहुत जताते हैं वो कौन

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 7:30 बज चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। कुछ 80s कुछ 90s के खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम हम कर रहे हैं। चलिए अगला गाना सुदीप जी खातिर, जो रहती है वाकवा और इस समय हमें सुन रही है, और गाना खासकर वो मांग रही है दीदी ललिता कुशल फैमिली, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना मालेंगा के सभी, राम रतन परिवार के लिए, कुआहू परिवार के लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के नाम। विरासत फिल्म से लिया गया 90s के सभी चाहने वालों के लिए, कुमार सानू और चित्रा की आवाज़ों में।

चलिए दोस्तों, दिलों की आवाज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। एक ऐसा सफर जहां बातें होती है, दिल की जज्बात होते हैं अपनों के, और हर गीत छू जाता है दिल का कोई कोना। जी हाँ, जीवन में हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग खुश हो जाते हैं, और आप अच्छे करते हुए भी, बहुत कुछ अच्छा काम करते हुए भी कुछ लोग कभी खुश नहीं होंगे। और आपको क्या करना है, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ना है। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं अनिल, राजन, कुंजन, नमस्ते आपको, श्यामा, महाराली, थैंक यू सो मच, मिदुन, रॉय राजपूत, हेलो टू यू। और अनिल, राजन, जी हाँ, आप सुन रही हैं रानी जॉय सुरित, हाय टू यू। मीना, दिनेश, गोपी, शैलेंडर गिल, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर पोंग फ्रॉम रोमानिया, और नेविन मोहोली फ्रॉम फ्रांस। और शीमा जो है हमें सुन रही है फ्रॉम पोर्ट लुइस, साथ में है जाद, हेलो। सुरियन इयाकानू, हाय टू यू। इंदिरा टोको फ्रॉम प्लेन दे पपाय, और शर्मा गविन तिलक, हेलो टू यू टू। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं मोहम्मद साहब, कैसे हैं आप। देविका सुभान, नमस्ते टू यू। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं सचिन, चलिए सचिन जी, थैंक यू सो मच। और आपको याद दिला दे कि हम यहाँ पर लाइव टिकटॉक भी कर रहे हैं ऑन RM Free रेडियो पेज, टिकटॉक पेज। आप अगर आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, अगर आप देखना भी चाहते हैं तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं।

चले बढ़ते हैं आगे और प्रिस एंजल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तान्या सी बालक और प्रिस जो है गाना मांग रही है अपने हस्बैंड सुभाष कोसी के लिए सान थैंक यू फॉर लिसनिंग जेविना हेलो विमला लक्ष्मण और सूरज सिबारन आप ही सुन रहे हैं और गाना जाएगा स्वाति और आश्विन के लिए और विव्यो जो है और एम फ्री रेडियो रॉक्स जी हाँ दारेन श्वेता रवेश प्रीशा लवना अपाडू फैमिली जो रहते हैं रोशनो उनके नाम गाना लीना के लिए विमला लक्ष्मण नाविता और दिलवंती सोनातन जी गाना आप मांग रही हैं अपनी दादी माँ के लिए और नानी माँ के लिए फ्रॉम तेज सोनातन

चलिए बढ़ते हैं आगे। 7:57 हुए हैं और जल्दी जल्दी समय बीता जा रहा है, लेकिन आप लोग साथ दे रहे हैं, हमें बेहद ही खुशी है। और यहाँ पर हमें सुन रही हैं ज्ञान बिहारी जी, और वो गाना मांग रही हैं अपनी प्यारी पत्नी सबिता, भाभी गीता, संजीव, सुनील, शीतल, रानी और सभी आरएम फ्री लिसनर्स के लिए। और साथ में है अगला गाना जाएगा किशन और उनकी प्यारी पत्नी रक्षा के लिए, हाय तनुजा, हेलो तुजाया, सलाम टू सिद्दीक और विनय कुटवाहू, हाय टू यू, आपको भी देवी का शुभ हो। विशा जो है हमें सुन रही है, और अनिल जी गाना मांग रहे हैं अपनी प्यारी पत्नी रीता के लिए, और निवेद भी है जो हमें सुन रहे हैं। और मनोज कुनाय आप गाना मांग रहे हैं अपने लिए, चलिए अपने लिए खासकर आपके नाम हम गाना चलाएंगे, जी हाँ। और वेदना फ्रॉम काठरबोन, निर्मल कुमार यादव आपके लिए भी गाना जाएगा, जैद साधना की ताकत, विम संध्या विजेश, चलिए नमस्ते आपको। आहानिश हेलो पुवाना, आपके लिए भी गाना जाएगा। और अक्षय जो है गाना मांग रहे हैं हमारे सभी प्यारे बच्चे के लिए, जो कल एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, भगवान हमेशा उनका साथ रहे।

0: दिलों की आवाज,
1: चलिए दिलों की आवाज प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। शावी जो है हमें देख रही हैं, थैंक यू सो मच शावी। और यहाँ पर शेला हमें नमस्ते, वसंती और हमारी प्यारी त्रिष्टि आकुलू के लिए, जी हाँ वो हमें देख रही है, सुन भी रही है, और गाना उनके लिए, उनके पति के लिए, उनके बच्चे के लिए, और साथ में उनके मामा पापा के लिए भी गाना जाता है। और शाली माँ खैडू, चलिए गाना आपके नाम, और आप कह रही हैं कि आप बहुत ही सैड हैं। सैड क्यों है? हर पर जीना है, हर पल में खुश रहना है, बस यही जिंदगी है। चंदा जगरो गुरु, चलिए आपके दोस्त केविन के नाम, रजनी मुहबियर आपके लिए, प्रियंका राय आपके नाम भी गाना जाएगा, और देविका सुभन जी हाँ, और सत्यवती के लिए भी हम गाना चलाएंगे। चलिए कुमार सानू की आवाज़ में दिव्या शक्ति फिल्म से लिया गया

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: 8:13 हुए हैं और यहाँ पर वैंकोवर कनाडा से हमें सुन रहे हैं किरण पुरी जी जिजिलाल नरिंदर कुमार नींदी और साथ में काला राम आपके लिए हम गाना चला रहे हैं और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं दिव्या दिया बिहारी प्रिंस आपके लिए मंजुलिका वाह क्या बात है और प्रजापत आरजे आपके लिए हेलो टू यू गाना हम चलाएंगे रेशमा रामचूला और जो है शीला रामफल जी आपके लिए तया भोला जीवन महादेव आपके लिए भी हम गाना चलाएंगे और विक्रम सूरज बाली जो रहते हैं घोंबुआ गाना आपके लिए और आपकी प्यारी पत्नी है माँ के नाम अनीता प्यातब हेलो टू यू और रीना दुकारन जो इस प्रोग्राम को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं देविका किस

किस्तांबा किस्तांबा और गाना मांग रही हैं अपने बेटे कार्तिक और हस्बैंड विशाल के लिए और सभी परिवार के नाम गाना जाएगा और मारिया जो हैं हमें सुन रही हैं और देख भी रही हैं फ्रॉम फ्रांस हेलो टू यू हेलो कुनल आपके लिए भी अगला गाना थ्री डेव का ये खूबसूरत गीत

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:21 हुए हैं। कहते हैं ना, कभी किसी की याद, कभी मोहब्बत का एहसास, कभी बिछड़ने का दर्द और किसी अपने की मुस्कुराहट। आज के इस सफ़र में हम बातेंगे कुछ ऐसे गाने जो आपको पसंद आएगा। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं कवि नूव जोकू, आपके लिए गाना हम चलाएंगे। और वृंदावन के लिए, जी हाँ, अपने न्यू बॉर्न बेबी के लिए गाना मांग रहे हैं। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस टू यू। और आपकी बीवी गौरी के लिए, और किरण पुरी जी, चलिए आप आ गए हैं टिकटॉक पर, हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। राजीव बुढ़ा मोंगो फ्रॉम नेपाल, कृष्णा खरका, नमस्ते टू यू। माधुरी जी हेलो, हमारी प्यारी गायत्री बिशन दत्त जी के लिए जो हमें देख रही है। अशोक मंगलदास, कतिबा मोंगो, आपके नाम गाना जाएगा। और साथ में अगला गाना अनिश के लिए जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और गाना फ्रॉम त्रिशा। और सीमा राम केलावन जो रहती है फ्रांस, इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय कर रही है, थैंक यू। और यहाँ पर लक्ष्मी राम जितन, आप रहती है बेलिया रिविया सेश, चलिए गाना आपके तीन बेटे के लिए, केशव, कुशल और माधव। लैला अकबोहली, चलिए वो इस प्रोग्राम को बेहद ही पसंद कर रहे हैं। और तरुण राम, कैसे हैं आप, हम तो बिल्कुल ठीक है। और आनंद जी वो रहते हैं त्यागोज, मीला रामा,
2: ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे।
1: संजना तो ताहम आपके लिए, और सागमा हेलो टू यू। राहत फ़तेह अली खान का ये खूबसूरत गाना एक खास इंसान के लिए, और वो है नवीद जो इस समय हमें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और ये रोमांटिक गाना उनके नाम।

सारे आठ बज चुके हैं और दोस्तों कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत कम वक्त के लिए आते हैं लेकिन उनकी यादें दिल में हमेशा रह जाती हैं और वक्त बीत जाता है, रास्ते बदल जाते हैं लेकिन कुछ रिश्ते दिल से कभी दूर नहीं होते। और आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक और खूबसूरत प्रोग्राम को और ये पल को और खूबसूरत बनाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, शारदा लखनऊ। चलिए आपके लिए हमने गाना तो चला लिया है, लैला मोडारन, हेलो टू यू। हमारी प्यारी माधुरी जी आपके नाम गाना जाएगा। कावी कावी सैन, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और रूपन पावन, थैंक यू। अनुष्का जो है गाना मांग रही है हस्बैंड केविन के लिए, केविन सही कहा हमने। मूसा हेलो। और रुकाया जो है गाना मांग रही है मालिगा के लिए, आज उनका जन्मदिन है। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद कॉप एंड फैमिली की ओर से, और वो रहते हैं रेजी। और हमारा दोस्त कृष मोहन, हेलो टू यू। ब्रिंदा कालू फ्रॉम गुडलैंड। रोनी अचाना, और अभिषेक शर्मा जी हाँ वो गाना मांग रहे हैं हॉस्पिटल, जी हाँ कांडस हॉस्पिटल किचन टीम के लिए। चलिए वो लोग भी काम कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग काम कर रहे हैं कुछ लोग अभी मस्ती कर रहे हैं, डिस्को में है, खाना खा रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या करें यही जिंदगी है। अमित बूढ़ा की आपके लिए, मीला रामा, कृष मोहन हमने आपका नाम ले लिया है, और राजेश जुटन, हर्तेश गाना मांग रहे हैं अपने हस्बैंड राजा के लिए।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: मेला दिलों का सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक उन खूबसूरत जज्बातों का है एहसास है जहां दिल एक दूसरे से जुड़ते हैं जिंदगी की भीड़ में जब अपनापन प्यार और मुस्कुराहट मिल जाए तो हर पल एक खूबसूरत मेले जैसा लगता है और यहां पर हमें सुन रहे हैं विमला हेलो टू यू राजेश जुटन जी हेलो नमस्ते और आप हैं विकास गोकुल टॉप प्रोग्राम थैंक यू सो मच अमित बुढ़ाकटोरी चलिए आपके लिए भी रविंद्र कुर दिन नाइस प्रोग्राम स्वीटी नमस्ते टू यू और हमारी प्यारी आयशा जो जुड़ चुकी है आपके लिए

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज,
1: दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। जी हाँ, ये कार्यक्रम खासकर आपके नाम और यहाँ पर बज चुके हैं 8:42, लेकिन आप जहाँ पर भी हमें सुन रहे हैं, कुछ लोग फ्रांस से हैं, इंडिया से हैं, इंग्लैंड से, इटली से, और जहाँ पर भी आप सुन रहे हैं, बस खूबसूरत गाने को आप एंजॉय करते जाइए। और सतीश दुकिया आपके लिए गाना नमस्ते टू यू परी जी हरे कृष्णा। और हमारी प्यारी सुदेवी जी जो हमें सुन रही है इस समय, गाना वो मांग रही है अपने बेटे दीजेश के लिए। और बेटी जो है प्रतीक्षा पर याग फैमिली और जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, बिस्वानी जुमन जी गाना मांग रही है अपने लिए और तमाम सुनने वालों के नाम। और शान एस बी आपके लिए गाना हम चलाएंगे जरूर। और हरीश चुनी हेलो टू यू। ओहो हरीश जी, आप दुखी मत हो जाइए, गाना जो है खासकर आपकी माता जी के लिए जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन जहाँ पर भी है वो आपको सुन रही है, आपको देख रही है, और उनके जो आशीर्वाद है हमेशा आपका साथ रहेगा।

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: जी हाँ, आज हम एसपी बालासुब्रमण्यम जी की के बारे में बात करेंगे। उनकी बरसी पर हम उनकी मधुर आवाज़ को याद कर रहे हैं और 25 सितंबर 2020 को वो हमसे दूर चले गए थे, लेकिन उनके गीत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनकी याद में सुनिए उनकी आवाज़ का एक खूबसूरत गीत और एसपी बालासुब्रमण्यम जी को विनम्र श्रद्धांजलि। और याद यहाँ पर हम गाना चलाएंगे दिनेश मातो, डनी जगरू जो हमें सुन रहे हैं, शान एस बी आपका गाना हम चलाने की कोशिश करेंगे लेकिन कम समय की वजह से हमें नहीं लग रहा है कि ये हो पाएगा। दिलीप कुमार जी आपके नाम और सैंपिया के रहने वाली आप हैं, गाना नाम तो आपने नहीं बताया। अच्छा, सुमानी गाना मांग रही है अपने हस्बैंड के लिए। जी हाँ, उनका जन्मदिन है और वो इस समय लंदन में है हॉलीडेज पर। चांदनी हरी राम, सभी राजमन गुहन फैमिली की ओर से।

और क्वीन जो है पूर्णिमा अमुगम काविदन के लिए जी हाँ राजीव नमस्ते टू यू

और मून के लिए गाना और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हो चला आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद ऐसे ही सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए और काजल रामाश्री हमाशिया है ना आपका नाम है थैंक यू सो मच इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम समाप्त हो चला हंसते मुस्कुराते रहिए आप अपना ख्याल रखिए मिलते हैं बहुत जल्द उषा कौर को दीजिए अनुमति नमस्कार शुभरात्रि

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 9:09 हो गल बा। नमस्कार प्यारे श्रोता लोग, उषा के सप्रेम नमस्कार स्वीकार करो चाह। रात्रि के 9:00 बाते और उस समय चलाल तोहर मन पसंद कार्यक्रम भोजपुरी तड़का के कई दोस्त लोगन त बोले लन जा कि 9:00 ला त मान ला ओ लोग के दिल में भोजपुरी तड़का बज गल। इतना ही प्रोग्राम के शौकीन हो जा। चलन नंबर वा मिला ल का सौ दे का तो वे सै कौरे जी भर के गीतवन के मांग कर जा तो हर संगे रब जा रात के 11:00 ले त चला भोजपुरी गीत किशोर खिमिया के गावल गीत पोपूरी सुना जा और गाना उन सभी लोगन खातिर जो ही बखत काम करता।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: नौ के रात के 9:32 हो गल बा बोल रे सुगा नानी केकर संगवे जयबे किशोर किमिया के गावल गीत भोजपुरी गीत तो हर संगे और भोजपुरी तंगा भोजपुरी तड़का में ता खूबे गमत होएला परंतु थोड़ा उदास होकर बतावत है कि बॉलीवुड के मशहूर विलेन सब के चाहत श्री प्रेम चोपड़ा के आज निधन हो गल 91 के उम्र में चला ईश्वर से प्रार्थना करे सा कि उनकर आत्मा के शांति मिली
2: राधा के शोभेला भरमान सिंधु
1: कृष्ण उकज के गावल गीत खासकर सुदेवी जी खातिर जो न रहिला बोबासन और इ वक्त साथ देवता

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: रात के 9:43 हो गल बा छोटा लोग हमने के दिनचर्या में भोजपुरी ना होई ता कमी महसूस होला और जब रात्रि के भोजपुरी तड़का नहीं चली ता ऐसे भूजला के तो लोग से जुड़ाए हमने के सतावत बातें का करबा यही हा भोजपुरी हंगामा त चल श्रीमती जन रही लासु याक ई बखत हमने के सुनाता गीत मांगा तवंजा अपने बेटे बेटियां पत्तो दामाद नाती पोते खातिर तचले संतोष महादेव के गावल गीत मारमित में गरम पानी

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 10 बज गए बा चला आज से पितृ पक्ष में हमने प्रवेश कर लीजा चला हमने के पितर लोगन के श्रद्धांजलि अर्पित करी सा एहे मौका हा अपन बड़े जन गुरु लोगन के सम्मान दे के ओ लोग कारण ता हमने आज मकाम तक आईली सा ता चला 10 बजकर 2 मिनट हो गल बा और यहाँ पर सुदेवी जी जोन हम रहिला वाक्वा गाना मांगा तवंजा दीदी ललिता खातिर कुशल फैमिली खातिर मालेंगा के राम रतन परिवार और AM2 और RM Free Radio के सभी लिसनर्स खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 10:16 भाई बहन लोग रेडियो के माध्यम से हमने तोहर से रोज के रोज जुड़ रही रही लसा और रेडियो के बिना जिए के तब पर यही मुश्किल बातें जब भोजपुरी तड़का के अपन घर में स्वागत करत हवा तब वॉल्यूम हुआ चाहेला बढ़ाए देके तो चला अगला गीत श्वेता बाबूलाल और किशोर खिमिया के गावल गीत ओबलमा गाना खासकर अनीता जी खातिर जोन रही लाफिक ऑफ लक और इ वक्त हमने के सुनाता जुरलबा और संगे इ गीत उन लोगन खातिर जोन गाड़ी चलावता इ वक्त काम से वापस घर जातवन सा चला ये गाना तो हर नाम और गाड़ी चलाते समय सावधानी सावधानी बरते खातिर

चला संगतिया लोगन अगला सप्ताह में तो अक्टूबर महीना चलाए और दुर्गा पूजा भी आरंभ ही हो जाए। व्रत पूजन में तो लोग मंगल रब तो साथी लोगन मन के पवित्र केवल नवरात्रि के अवसर पर नहीं बल्कि प्रतिदिन चाहेला रखे के और रोज के हमनी के साथ एमबीसी रेडियो पर देखे के।

चला गाना चलाते चलाते तो हर मांग पूरा करते करते थोड़ी घड़ी में 11 बज जाए, कैसे समय निकल गल पता ही नहीं चलल। एगो कहावत बाते कितनी जल्दी ई मुलाकात गुजर जाला, प्यास नहीं बुझाल हर जा बरसात गुजर जाला। तो चला अनुमति हमके दिया जा, नमस्ते और

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
1: से लौट के आए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल। जी हाँ दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पुराने गाने सिर्फ म्यूजिक नहीं होते हैं, ये तो एक एहसास होता है और इनमें मोहब्बत है, दोस्ती है और उम्मीद भी है और ज़िंदगी को मुस्कुराकर जीने का अंदाज भी है। आज के इस प्रोग्राम में हर गीत के साथ हम लेकर चलेंगे आपको उन दिनों में जब कैसेट रिवाइंड होती थी, रेडियो का इंतज़ार होता था और हर गाना दिल से सुना जाता था। तो शुरू करते हैं यादों का ये खूबसूरत सा सफ़र सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर आपके इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल की निशा के साथ।

वैसे दोस्त कहते हैं वक्त कभी वापस नहीं आता, लेकिन कुछ पुराने गाने हमें उस वक्त में ज़रूर वापस ले जाते हैं। आज भी जब कोई पुरानी मेलोडी बजती है तो दिल कहता है अरे ये तो मेरी याद है। तो आज की रात उन्हीं यादों के नाम, उन्हीं एहसासों और उन्हीं एवरग्रीन मेलोडीज के नाम आप सुन रहे हैं सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस।

दोस्तों, आपके घर में भी कोई ऐसा पुराना सॉन्ग है जो सुनते ही मम्मी पापा याद आ जाते हैं, या कोई ऐसी मेलोडी जो आपके बचपन का साउंडट्रैक हुआ करती थी? म्यूजिक की सबसे ब्यूटीफुल बात यही होती है कि वक्त बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, लेकिन एक पुराना गीत वही फीलिंग वापस ले आते हैं। तो चलिए एक और खूबसूरत याद को जिंदा करते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

वैसे आज प्रेजेंट से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और चलते हैं उन दिनों में जब एंटरटेनमेंट का मतलब रेडियो कैसेट और रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था, जब एक फेवरेट सॉन्ग के लिए पूरा दिन इंतजार होता था, वो सिंप्लिसिटी, वो एक्साइटमेंट और वो म्यूजिक, सब कुछ कितना स्पेशल था ना। तो आज फिर से वही मैजिक महसूस करते हैं पुराने बॉलीवुड गानों के साथ सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

दोस्तों यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं, हम हमेशा इस बात पे कायम रहते हैं क्योंकि यादें कभी पुरानी नहीं होती और ना ही वो गीत जो उन यादों को जिंदा रखते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर नगमे जो हर जनरेशन के दिल के करीब है, चाहे आप उन्हें पहली बार सुन रहे हो या सौवीं बार। यकीन मानिए हर बार ये गीत एक नया एहसास दे जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस संगीत भरे सफर का हर पल आप दिल से एंजॉय कीजिए ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: उम्मीद करते हैं कि दिल से आपने इस खूबसूरत शो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर से आपसे मिलने का हम वादा करते हैं एक और सुनहरे पल में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना,
1: एक चतुर नारे।

0: एबीसी रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।
1: अरे जल गई जल गई।